0: शुभ प्रभात दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दर्शन के भजनों के इस प्रोग्राम में। भजन क्यों किए जाते हैं, यूं तो सभी को इस बारे में पता है, लेकिन फिर भी भजन करने से जो मन की शांति हमें मिलती है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, सुबह सुबह जो हमारे चित्त को, हमारे स्वभाव को, हमारे सोचने की शक्ति को प्रबल कर देता है, अच्छा बना देता है, सुख से भर देता है, उसी को भजन कहते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं दिव्य दर्शन के ये भजन।
1: फूलों से सीखिए दोस्तों।
0: फूलों का जीवन बहुत ही स्वाभाविक, सहज और सरल होता है। वो अपनी प्रसन्नता से खिलते हैं। ये दूसरी बात है कि उनकी प्रसन्नता से दूसरे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह का जीवन अगर मनुष्य का हो जाए तो उसके जीवन में भी स्वाभाविकता, सहजता और सरलता आ जाएगी। वो प्रकृति के सौंदर्य को प्राप्त कर सकेगा, खुद खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रख पाएगा।

एक समय था जब बेईमानी शब्द गाली जैसा लगता था। वक्त बदल गया और लोग किसी भी तरह से सफलता पाने की चाह रखने लगे और बेईमानी भी बस एक योग्यता बनकर रह गई, यानी कि एक एलिजिबिलिटी, एक कला बन गई बेईमानी। बेईमान लोगों को मुखड़ा बना दिया जाता है और वो कैसा भी काम निकालकर ले आते हैं। ऐसे में दूसरे लोग मानने लगते हैं कि बेईमानी भी दरअसल एक कला है, एक योग्यता है। आप बेईमानी के साथ क्या करेंगे, मैं आपसे पूछता हूं। एक बेईमान को हटाओ तो दो नए आ जाएंगे, आप कहेंगे। इसलिए विचार ये करिए कि उसकी बेईमानी आपको प्रभावित ना कर जाए, आपको इन्फ्लुएंस ना कर जाए, आपको अफेक्ट न डाल दे। और थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए कि हम उसकी बेईमानी को सुधारें, बढ़ाएं नहीं। एक गलत व्यवस्था में से अच्छे व्यक्ति को तो निकलना ही पड़ता है। ये काम हनुमान जी ने विभीषण के साथ भी किया था। विभीषण लुटेरों और बेईमानों की नगरी लंका में रहते थे, रावण के भाई थे, लेकिन हनुमान जी ने उस बेईमानी में से एक ईमानदार को बाहर निकाला। आज भले ही लोग अज्ञानता के कारण विभीषण को घर का भेदी कहें, पर विभीषण इस बात का भी तो प्रतीक है कि बुराई के बीच में से अच्छाई की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान? फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें, भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़,

तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए दोस्तों ऊपर वाले को याद करते हैं इस भजन को सुनते हुए।

एक बार महर्षि व्यास ने अपने बेटे शुकदेव को पढ़ने के लिए राजा जनक के पास भेज दिया। राजा जनक का महल देखकर शुकदेव जी को लगा कि राजा उन्हें क्या उपदेश दे पाएंगे, बेकार में ही पिताजी ने इनके पास मुझे भेज दिया है। वो निराश होकर लौटने ही वाले थे कि राजा जनक ने उन्हें कहा, चलिए हम धर्म चर्चा महल में नहीं सत्संग भवन में करेंगे। सत्संग भवन में वो आत्मा परमात्मा के बारे में बातचीत ही कर रहे थे कि कुछ राज कर्मचारी हांफते हुए आए और कहने लगे कि महल के एक कमरे में आग लग गई है। राजा जनक ने शांति से कहा, देखो मैं इस मुनि के साथ ईश्वर संबंधी चिंतन में लीन हूं, आग बुझाने की कोशिश करो, सांसारिक संपत्ति नष्ट होती है तो हो जाने दो। आग की लपटें सत्संग भवन तक पहुंच गई, फिर भी राजा जनक परेशान नहीं हुए। लेकिन शुकदेव अपनी किताबें उठाकर कमरे से बाहर आ गए। जनक जी ने कहा, दुख का मूल संपत्ति नहीं, संपत्ति से प्यार है। हमें केवल वस्तुओं के उपयोग का अधिकार है, अक्षय संपत्ति के स्वामी और निर्धन दोनों को मृत्यु के समय सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए नाशवान धन संपत्ति के प्रति अपने प्यार को मत बढ़ाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपके पास धन है, संपत्ति है, सुविधाएं हैं, तो सबका उपभोग कीजिए, लेकिन उनसे इतना प्यार ना कीजिए कि वो आपको परेशान करके रख दें। बस शुकदेव महाराज को समझ में आ गया कि वास्तव में जनक जी विदेह हैं। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और सुनते रहिए।

प्रेम करुणा और क्रोध घृणा की शक्तियां संसार में हमेशा काम करती रहती हैं। ये एक झूले के खेल की तरह होता है। अब सवाल यह है कि आप झूले के किस सिरे को वजनदार करना चाहते हैं। जैसे ही आप ऐसी चीजों में विश्वास करना शुरू करते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, स्वाभाविक है आप द्वंद में जीने लग जाते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिए। आज आप एक शांत व्यक्ति हैं, लेकिन कल अगर कोई आपकी मान्यताओं और परंपराओं का विरोध करने लग जाए तो आप उससे तुरंत झगड़ने लगते हैं। विश्वास में जीने में भला क्या बुद्धिमानी है? विश्वास में जीने से क्या लाभ है? सिर्फ इतना ही कि आपका अहम संतुष्ट हो जाता है। मैं नहीं जानता, अहम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं जानता हूं, एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने अहम को बढ़ावा दे सकते हैं। किसी खास स्थिति में जब आप कहते हैं कि मैं नहीं जानता, आप किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रह जाते, आप विरोध के योग्य भी नहीं रह जाते, आप अत्यंत विनम्र और बेहद अच्छे इंसान हो जाते हैं। जब तक आप अपने अंदर शांति लाने के योग्य नहीं हैं, आप भला विश्व में शांति स्थापित करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? मतलब यह हुआ कि अगर आप अंदर से खुद शांत नहीं हैं, तो बाहर आप शांति कैसे फैला सकते हैं? अगर इस छोटे से मन को आप शांत नहीं कर सकते, तो क्या विश्व में शांति पैदा कर पाएंगे? आप संसार में जो भी देख रहे हैं, वो आपके छोटे से मन की एक छवि है। क्या संसार में ऐसी कोई चीज हो रही है जो आपके मन में नहीं हो रही? वही तो हो रही है। योग विज्ञान अपने भीतर देखने का एक तरीका है। किसी खास दृष्टिकोण से नहीं देखना, सिर्फ भीतर देखना। यदि आप किसी चीज से अपनी पहचान बना लें, तो आप भीतर नहीं देख सकते। जैसे ही आप किसी चीज से अपनी पहचान बनाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गौर कीजिए, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है दोस्तों कि मैं एक तरह की गाड़ी चलाता हूं, मैं एक तरह के मकान में रहता हूं, फ्लैट में रहता हूं, एक तरह का मोबाइल लिए फिरता हूं। क्या मेरी पहचान इन चीजों से है या मेरी पहचान से इन चीजों की पहचान है? सोचने की कोशिश कीजिए। आपका सोचना और महसूस करना बस इसी बात पर निर्भर करता है कि इस वक्त आपने अपनी पहचान किससे बनाई है। गाड़ी से, मोबाइल से, घड़ी से, घर से, किससे? अपनी पहचान को मिटाने और सच्ची शांति का अनुभव करने में ध्यान आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो कम से कम उस वक्त तो आपके लिए कुछ भी और मायने नहीं रह जाता, सिर्फ आपका वजूद बच जाता है। वहां भी कुछ भी शेष नहीं रह जाता। शांति का मतलब है शून्यता या खालीपन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पैदा करते हैं। शांति ऐसी कोई चीज नहीं है जो घटित होती है। शांति ऐसी चीज है जो हमेशा है। शांति ही अस्तित्व की बुनियाद है। सतह पर जो होता है व्यवधान है, उपद्रव है, वो ठीक समुद्र जैसा होता है। समुद्र की सतह पर हलचल होती है ना, लेकिन नीचे गहराइयों में ये पूरा शांत होता है। जब आप इस गुण के साथ अच्छा तालमेल बिठा लेंगे, तो वास्तव में शांति पा जाएंगे। आइए दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा भजन।

दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जाता है, चारों तरफ पूछा जाता है, बुद्धिमान मनुष्य कौन है? देखिए, सवाल तो बहुत ही आसान है, लेकिन जवाब बहुत रहस्यमयी और गूढ़ है। अब सुनिए, जो कहता है कि केवल उन्हीं बातों को सुनूंगा जिनको सुनने से मन में परम पुरुष की ओर बढ़ूंगा मैं, केवल उन्हीं बातों को सोचूंगा जिनको सोचने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता ही चला जाएगा, केवल उन्हीं को अपने मन का विषय बनाऊंगा जिसकी भावना लेने से मन चैतन्य की ओर बढ़ता है, ऐसे मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य का काम क्या होता है। ऐसे मनुष्य के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि ज्ञानेंद्रियों के जरिए मन को जो कुछ भी ग्रहण करें उसमें ईश्वर की भावना हो। ठीक उसी तरह कामेंद्रियों से मनुष्य जो कुछ भी करे उनके प्रति उसे ये भावना लेनी होगी कि वे सभी वस्तुएं परमात्मा के ही विशेष रूप हैं। ऐसे में वो बाहर की जिस भी वस्तु के संपर्क में आएगा वो ईश्वर की भावना के साथ होगा, तो वो आध्यात्मिक साधना का स्वरूप बन जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, सुनने से, मनन करने से और ध्यान करने के जरिए मनुष्य बहुत पुण्य कमा सकता है, फिर महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से भी पुण्य अर्जित हो सकता है। अब ये कैसे होता है? अचानक मन में एक भावना का उदय होता है कि मैं इस विराट, इस महान व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं। ये भावना मन में लगातार बढ़ती रहती है। इस भावना के बढ़ते रहने के कारण मन पवित्र हो जाता है, इससे मनुष्य का कल्याण होता है। इसी तरह महापुरुषों के स्पर्श से भी मन पवित्र हो सकता है, उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए ये कहना बहुत ही संगत है कि महापुरुषों के दर्शन या स्पर्श से जीव की मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति होती है। जहां दर्शन या स्पर्श के बदले मन में नजदीक जाने का भाव होता है, वहां ना दर्शन करने की जरूरत होती है और ना ही स्पर्श करने की। सुनने के शब्द को रखा गया है धर्म के प्रचार के लिए। मानव मन में सात्विक भाव जगाने के लिए सुनने की आवश्यकता होती है। देखिए, जब आप कीर्तन करते हैं तब उससे केवल आप ही आनंद पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके मुंह से जो कुछ भी निकलता है जब वो दूसरों के कानों में पड़ता है तो उन्हें भी खुशी मिलती है, उनकी भी उन्नति हो जाती है, उनका भी कल्याण हो जाता है। इसलिए यहां सुनने के शब्द को बहुत जरूरी समझा गया है। दूसरा है मनन, यानी कि विचार करना, अपने आप में सोचना। अच्छा हो या बुरा, काम हमारा मन ही करता है। देखिए, केवल हाथ पैर काम नहीं करते। हाथ से तो चोरी करने का अर्थ है कि मन चोरी कर रहा है, इसलिए मनन क्रिया के ऊपर अधिक जोर दिया गया है, यानी कि एकांत में अपने से बात कीजिए, अपने आप सोचिए। सत्संग के फलस्वरूप साधु संगत में मन अच्छी बातों को लेकर चिंतन करता ही है, इसलिए मानसिक उन्नति हो जाती है। और मानसिक उन्नति का मतलब है पूरे मनुष्य की उन्नति।

तो चलिए दोस्तों, इन्हीं भजनों के साथ हम सभी का दिन शुभ हो। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा, आज के सुखदायक दिन के बाद कल सुबह मैं फिर प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के भजनों के साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप हैं आप ही के झाबुआ की आवाज, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, आज मैं आपसे प्यार, पॉलिटिक्स या वैलेंटाइंस की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी एक फॉन्ट की। जी हाँ, एक फॉन्ट जो हम सभी यूज करते हैं, और बिलीव कीजिए, ये कहानी आपको किसी थ्रिलर से कम नहीं लगने वाली। लेट 1920s का लंदन इमेजिन कीजिए। सुबह होती थी, चाय के साथ एक चीज पर भरोसा सब करते थे, द टाइम्स न्यूज़पेपर। अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी से भरा हुआ। अगर टाइम्स ने लिख दिया भाई, तो मतलब सच है। लेकिन एक आदमी था जो रोज पेपर तो पढ़ता था, बट इरिटेट हो जाता था। उसे आर्टिकल से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे हेडलाइन से भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसे प्रॉब्लम थी लेटर्स से, हाँ अक्षरों से। स्टैनले मॉरिसन, वो जर्नलिस्ट नहीं था, प्रिंटर भी नहीं था, आर्टिस्ट भी नहीं था, एटलीस्ट ड्रामेटिक पेंट स्प्लैटर्ड आर्टिस्ट टाइप तो नहीं ही था। वो था टाइपोग्राफिक थिंकर, ऐसा आदमी जो ए को देखकर उसका वेट मेजर कर लेता था, ई को देखकर उसकी स्पेसिंग जज कर लेता था, और कॉमा को देखकर उसकी डिग्निटी पर डिस्कस कर सकता था। जब मॉरिसन ने द टाइम्स को देखा, उसे एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखा। पेपर मॉडर्न था, फास्ट प्रिंटिंग प्रेसेस पर छपता था, चीप न्यूज प्रिंट पर छपता था, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट भी होता था, लेकिन लेटर्स पुराने जमाने के, लाइंस क्लॉग थी, इंक स्प्रेड हो जाती थी, कॉलम स्पेस वेस्ट हो रहा था। आप सोचिए, 1920s में कोई आदमी न्यूज़पेपर को क्रिटिसाइज करे, वो भी पब्लिकली, और फिर क्या हुआ? आज के जमाने में होता तो शायद ट्विटर वॉर बन जाता, लेकिन उस दौर में क्लास थी। द टाइम्स ने कहा, अच्छा आपको प्रॉब्लम है, तो आइए सोल्यूशन दीजिए। इमेजिन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। मॉरिसन को इनवाइट किया गया, एक नया टाइप फेस डिजाइन करो, ऐसा जो स्मॉल साइज में भी क्लियर हो, चीप पेपर पर भी एलिगेंट लगे, फास्ट प्रिंटिंग सरवाइव कर सके और डिग्निटी भी न खोए। अब ये सिर्फ डिजाइन का काम तो नहीं था, ये इंजीनियरिंग भी था, साइकोलॉजी भी था, फिलॉसफी भी था। मॉरिसन रेनेसों एरा के लेटर फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, उनका बैलेंस, उनकी रीडेबिलिटी, उनकी सिमेट्री, लेकिन वो उन्हें कॉपी नहीं करते, वो उन्हें रिफाइन करते हैं, लेटर्स को थोड़ा नैरो करते हैं ताकि कॉलम में ज्यादा वर्ड्स आ सके, सेरिफ्स को शार्पन करते हैं ताकि इंक स्प्रेड होने पर भी क्लैरिटी बनी रहे, स्पेसिंग टाइटन करते हैं ताकि पेज क्लीन लगे। वो सिर्फ रिफाइन करते हैं और करते जाते हैं, हर स्ट्रोक कैलकुलेटेड, हर कर्व जस्टिफाइड। फिर आते हैं विक्टर लार्डेंट, टाइम्स के ड्राफ्ट्समैन। डिजाइन पेपर पर मेटल से आता है, लेटर्स को मेटल में कट किया जाता है, कास्ट किया जाता है, प्रेस पर टेस्ट किया जाता है, और फिर रिजेक्ट, फिर से ड्राइंग बोर्ड, फिर कास्ट, फिर प्रिंट, फिर रिजेक्ट, ओवर एंड ओवर एंड ओवर ओवर अगेन। क्यों? क्योंकि मेटल में जो सुंदर लगता था, प्रिंट में वो मेसी हो जाता था। ये वही स्टेज है जहां पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन मॉरिसन
मॉरिसन परफेक्शनिस्ट था। और फिर आई अक्टूबर 1932 की एक सुबह, द टाइम्स का एक नया इशू निकला, सेम पेपर, सेम हेडलाइंस, सेम जर्नलिस्ट्स, लेकिन लेटर्स एकदम नए। पेज क्लीनर था, वर्ड्स क्लियरर थे, कॉलम्स शार्पर थे, और रीडर्स, उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। और दोस्तों, वही सबसे बड़ा ट्रायम्फ था। बेस्ट डिजाइन वो होता है जो चिल्ला चिल्लाकर अटेंशन नहीं सीक करे, वो क्वाइटली काम करता है। सालों बाद दुनिया को पता चला हिस्ट्री का सबसे इन्फ्लुएंशियल टाइपफेस क्वाइटली लॉन्च हो चुका था। उसका नाम टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, वही फॉन्ट जिसमें हम सब ने स्कूल प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, वही फॉन्ट जिसमें रिज्यूम्स बनाए जाते हैं, वही जिसमें लव लेटर्स टाइप हुए हैं, और वही जिसमें रेजिग्नेशन लेटर्स भी टाइप किए गए हैं। और शायद इस वक्त मैं जो कुछ बोल रही हूँ, आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो सभी उसी फॉन्ट में है। कभी सोचा है, एक फॉन्ट ने दुनिया का टोन डिफाइन किया, अथॉरिटी का लुक डिसाइड किया, सीरियसनेस को शेप किया, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पर्सनालिटी दी, और लोगों को पता भी नहीं चला। इस कहानी का मॉरल, कभी कभी सबसे पावरफुल चीजें वो होती हैं जो स्पॉटलाइट में नहीं होती, जो क्वाइटली काम करती हैं, जो क्लैरिटी देती हैं, जो स्ट्रक्चर बनाती हैं, और आप उन्हें नोटिस भी नहीं करते। तो अगली बार जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करें या उसे ओपन करें और डिफॉल्ट फॉन्ट दिखे, तो जरा रिस्पेक्ट से देखिए। हो सकता है वो सिर्फ लेटर्स ना हो, हो सकता है वो डिजाइन की दुनिया का एक साइलेंट रेवोल्यूशन हो। सोच के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल डिलीवरी इतनी फास्ट हो गई है कि कभी कभी लगता है घर का दरवाजा खोलने से पहले ही राइडर बाहर खड़ा होगा। सर, आपने सोचा भी था ऑर्डर करने का? हम निकल पड़े। इंट्यूशन लेवल माँ से भी तेज।

दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रेन में बैठे हैं, जापान की कंट्री साइड। विंडोज के बाहर ग्रीनरी ब्लर हो रही है, सिस्टम परफेक्ट, टाइमिंग परफेक्ट, सब कुछ डिसिप्लिन में चल रहा है। फिर अचानक ट्रेन रुकती है, डोर्स खुलते हैं, आप उतरते हैं और सामने ना कोई शहर, ना कोई मार्केट, ना कोई रोड, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक नदी, एक जंगल और ऊपर खुला आसमान। ये है जापान की सिरोमुराशी स्टेशन की कहानी। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कहीं नहीं लेके जाता और जहां आप पैदल पहुंच भी नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रेन से ही आ सकते हैं और ट्रेन से ही वापस जा सकते हैं। क्यों बनाया गया होगा ऐसा स्टेशन? प्रॉफिट के लिए नहीं, टूरिज्म के लिए नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। ये स्टेशन बना सिर्फ एक वजह से, ताकि लोग रुक सकें। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर एक चीज मेजर होती है, कितना प्रोडक्टिव हो, कितना कमा रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो जीवन में। लाइफ एक डैशबोर्ड बन चुकी है, मीट्रिक्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ। और उस दौर में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म क्वाइटली खड़ा है, जैसे कह रहा हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ। सोचिए, ट्रेन आती है, आप उतरते हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाउडस्पीकर नहीं, कोई डिजिटल बोर्ड फ्लैश नहीं कर रहा, कोई एड नहीं कह रहा कि ये खरीदो वो खरीदो, और कोई नोटिफिकेशन नहीं कह रहा रिप्लाई करो भाई रिप्लाई करो। बस हवा है, पानी की हल्की सी आवाज है, पेड़ों का सांस लेना है, और आप, बस आप। ये स्टेशन ये याद दिलाता है कि कभी कभी एग्जिस्टेंस खुद ही इनफ होता है। जापान को हम एफिशिएंसी के लिए जानते हैं, बुलेट ट्रेन्स सेकंड्स की एक्यूरेसी से चलती हैं, सिस्टम्स हैं फ्लॉलेस और डिसिप्लिन है अनमैच्ड। लेकिन उसी प्रिसिशन के नीचे एक सॉफ्टनेस भी है। जापान में कॉन्सेप्ट

आएगी, डोर्स बंद हो जाएंगे, लाइफ फिर से चल पड़ेगी। लेकिन उन कुछ मिनटों के लिए आप बेंच पर बैठकर बस देख सकते हैं नदी का फ्लो, हवा का मूवमेंट, आसमान का वो नीला रंग, और शायद अपने अंदर की नॉइस भी धीरे धीरे कम होती भी महसूस होती है। सोचिए, एक रेलवे कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ऐसा स्टेशन बनाएंगे जो उन्हें रिच नहीं बनाएगा, जो उन्हें आमदनी नहीं देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं ये डिसीजन रहा कि ब्यूटी मैटर करती है, रुकना मैटर करता है, और साइलेंस, शांति सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज के दौर में जब हर जगह हसल कल्चर का प्रेशर है, जल्दी चलो, ज्यादा कमाओ, थोड़ा सो, उस सभी के बीच में ये स्टेशन एक साइलेंट रिबेलियन है। ये कह रहा है कि लाइफ सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, कभी कभी प्लेटफॉर्म भी होती है। हम सब अपनी अपनी ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं, करियर की ट्रेन, रिलेशनशिप की ट्रेन, सोशल एक्सपेक्टेशंस की ट्रेन। कभी सोचा है आपने लास्ट टाइम कब बिना किसी रीजन के पॉज लिया था, कब बिना फोटो क्लिक किए सनसेट देखा था, कब बिना स्टोरी अपलोड किए कॉफी पी थी। सियारो मिराशी स्टेशन कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, वो एक फिलॉसफी है। वो याद दिलाता है कि हम सिर्फ मशीन्स नहीं हैं, हम सब प्रोडक्टिविटी के यूनिट्स नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसान को कभी कभी बस रहना होता है, बस होना होता है। शायद हमें जापान जाने की जरूरत नहीं, शायद हमें अपनी ही लाइफ में छोटे छोटे नो डेस्टिनेशन प्लेटफॉर्म्स बनाने की जरूरत है। 5 मिनट बिना फोन के, 10 मिनट बिना गोल के, थोड़ा वक्त बिना आउटकम के, क्योंकि आखिर में ब्यूटी का पर्पस सिर्फ देखा जाना होता है और एग्जिस्टेंस का सेलिब्रेशन सिर्फ महसूस किया जाना होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ की ट्रेन भाग रही हो, कभी कभी एक ऐसा स्टेशन ढूंढ लीजिए जो कहीं नहीं जाता, हो सकता है वही आपको वापस खुद तक ले आए। जरा रुक के देखिए।

0: चलो दोस्तों अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पुराने बाजार में दुकानदार कहता था, अरे आज थके हुए लग रहे हैं, चाय पिला देता हूँ, पियेंगे? आज ऐप बोलता है, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस बिहेवियर यू मे ऑल्सो लाइक एंग्जाइटी।

जरा आंखें बंद कीजिए। सुबह का वक्त है, पुराने शहर की तंग सी गली है, पत्थर की दीवारें हैं, हवा में मसालों की खुशबू है, दूर कहीं चाय उबल रही है और आज दुकान के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखी है, बस एक कुर्सी, ना कोई बैनर, ना कोई डिस्काउंट बोर्ड, ना कोई फ्लैशी डिस्प्ले, सिर्फ एक कुर्सी। ये कहानी है पुराने सूख की, पुराने बाजार की, जहां हर सुबह दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बाहर एक कुर्सी रख देते थे। वो कुर्सी फर्नीचर कम सिग्नल ज्यादा होती थी। अगर कुर्सी बाहर रखी है इसका मतलब है आज अभी तक कोई सेल नहीं हुई। अगर कुर्सी अंदर चली गई तो समझ जाइए दिन शुरू हो चुका है, पहली बोनी हो चुकी है, पहला ग्राहक आ चुका है। अब सोचिए, एक नया कस्टमर बाजार में आता है, एक दुकानदार उसे देखता है, लेकिन वो सिर्फ कस्टमर को नहीं देखता, वो दूसरी दुकानें भी देखता है, कौन सी कुर्सी अब तक बाहर है। अगर उसे दिखता है कि किसी और दुकान के बाहर कुर्सी अभी भी बाहर ही वेट कर रही है, तो हल्की सी मुस्कान के साथ वो कहता है, उधर चले जाइए साहब, उनके पास जो आप ढूंढ रहे हैं मिल जाएगा। सोचिए, अपना कस्टमर किसी और के पास भेजना, आज के जमाने में तो ये इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन वहां सूख में ये बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं थी, ये एक कम्युनिटी की बात थी, ये सर्वाइवल का शायद एक शेयर्ड मॉडल था। वहां कंपटीशन का मतलब था साथ साथ जीतना, आउटशाइन करना नहीं, अपलिफ्ट करना। सूख में प्रोस्पेरिटी एक रेस नहीं थी, एक जर्नी थी सभी के साथ। अब थोड़ा प्रेजेंट में आते हैं। आज हम ऐप खोलते हैं, एक क्लिक, एक ऑर्डर, फ्री डिलीवरी, फास्ट डिलीवरी, 30 मिनट्स गारंटी, बेस्ट प्राइस गारंटी। कन्वीनियंस के नाम पर हम सभी ने स्पीड को वर्शिप करना एकदम शुरू कर दिया है, लेकिन इस स्पीड के पीछे क्या है? डिलीवरी राइडर जो ट्रैफिक में जान रिस्क पर डालता है, वो वर्कर जो मिनिमम वेज पर लॉन्ग शिफ्ट्स करता है, छोटी दुकान जो धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है। एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कि कौन दिखेगा कौन नहीं। वेंचर कैपिटल डिसाइड करता है कि किसकी ग्रोथ होगी, किसकी दुकान बंद होगी। और धीरे धीरे वो कुर्सियां गायब हो गई, वो हल्की सी मुस्कान, वो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, वो बिलोंगिंग का एहसास, वो बातचीत का मजा, कॉमर्स का ह्यूमन फैब्रिक धीरे धीरे पतला हो गया। आज हम सक्सेस को मेजर करते हैं स्केल से, स्पीड से, फंडिंग राउंड से, लेकिन पुराने जमाने के बाजार में सक्सेस मेजर होती थी रिश्तों से। क्या आपने नोटिस किया है, जब आप लोकल दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपका नाम जानता है, आपके घर का एरिया जानता है, कभी कभी आपके बच्चों के एग्जाम्स भी याद रखता है। ऑनलाइन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहां से आते हैं, वो सिर्फ एक ऐप है और वो सिर्फ डेटा दिखाती है। सूख की कुर्सी एक सिंबल थी कि आज मेरी बारी नहीं आई तो कोई बात नहीं, कल आएगी, पर मेरे पड़ोसी की आज आ जाए, ये भी एक खुशी की बात ही है मेरे लिए। क्या हमने वो सोच खो दी है? ये कहानी सिर्फ बाजार की नहीं है, ये कहानी इंसानियत की है। हम सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह, करियर की, रिलेशनशिप की, एम्बिशंस की। कभी कभी हमारी कुर्सी बाहर रह जाती है, दिन शुरू ही नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, और तब घर का कोई पड़ोसी हल्की सी मुस्कान से अगर ये कह दे कि साथ हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्या बात होगी? कभी सोचा है? शायद दुनिया थोड़ी और बेहतर हो जाए, शायद असली वेल्थ कभी गुड्स में थी ही नहीं, वो हाथों में थी जो उन्हें बेचते थे, वो दिलों में थी जो कस्टमर को गाइड करते थे, वो इनविजिबल टाइज में थी जो एक कम्युनिटी को बांध कर रखती थी। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी छोटी दुकान के पास से गुजरे,
या किसी लोकल वेंडर से खरीदारी करें, एक पल के लिए कुर्सी को याद कीजिए। वो कुर्सी जो कह रही थी, हम साथ जीतते हैं। और शायद हम सबको अपनी जिंदगी के बाहर एक छोटी सी कुर्सी रखनी ही चाहिए, क्योंकि बाजार सिर्फ सामान से नहीं, इंसान से बनता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: आजकल तो ऐप इतनी स्मार्ट हो गई है कि कल मैंने बस अपना फोन उठाया ही था कि ऐप ने नोटिफिकेशन भेज दिया, मैम आप उदास लग रही हैं, आइसक्रीम भेज दें। और नीचे छोटा सा लिखा था, डिलीवरी पार्टनर ऑलरेडी इमोशनल सपोर्ट के साथ निकल चुका है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।

जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन।

माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं।

0: झुककर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है। बहुत कुछ टूटता है तब नया बनता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: इस जाबाज सेना के पराक्रमी कप्तान को करगिल युद्ध के समय असाधारण शौर्य दिखाने के कारण
2: मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
3: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
4: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
5: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
4: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
5: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
4: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
6: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
6: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
6: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
7: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
3: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में

0: अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999। स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का

0: भेज दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
1: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
2: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
1: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
3: हमला करो!
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
5: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
6: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
5: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण तू भी बचवाला है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ। मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: सपना हुआ सच।
2: जी हाँ। राम राम भाई।
3: राम राम भाई, राम राम। अरे हरिया, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे?
2: अरे भाई, मुझे अपने बच्चे का आपके स्कूल में दाखिला जो करवाना है।
3: देखो भाई, मैं यहाँ गेट कीपर हूँ, सब जानता हूँ। यहाँ तो बड़े बड़े अफसर, सेठ, साहूकारों के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत फीस लगती है।
2: हैं? पर मैंने तो कुछ और ही सुना है।
3: क्या सुना है भाई, जरा मुझे भी तो बताओ।
2: अरे भाई, मेरे पार्षद जी कह रहे थे कि काका, अब तुम अपने बच्चे को भी इस पास के बड़े स्कूल में भर्ती करवा देना है, फीस वगैरह सारा खर्चा सरकार देगी।
3: अच्छा?
2: बस तुम अपना गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र साथ ले जाना है। अगर उम्र का प्रमाण पत्र ना हो तब भी किसी बच्चे को दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता।
3: अरे वाह भाई, तुमने तो हमें नई बात बताई है। यदि ये सही है तो मैं भी अपनी 6 साल की बिटिया को इसी स्कूल में भर्ती करवा दूंगा। अब ऐसा करते हैं, प्रिंसिपल मैडम के पास चलते हैं। चलो चलो
2: चलो।
3: मैडम जी नमस्ते।
1: नमस्ते। नमस्ते शंभू।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते। आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए।
2: जी धन्यवाद।
1: कहो शंभू, कैसे आना हुआ?
3: मैडम जी, ये हरिया है, अपने बच्चे का इस स्कूल में नाम लिखाना चाहते हैं। मैंने समझाया भी, पर ये कह रहे हैं कि अब गरीबों के बच्चों को भी इन स्कूलों में दाखिला मिल सकता है।
1: अरे शंभू, तुम्हें नहीं मालूम, हरिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है, जिसमें गरीब छात्रों के लिए भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों का आरक्षण रखा है।
3: अच्छा, तो मैडम जी, क्या मैं भी अपने बिटिया को दाखिला दिला सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, आजकल हमारे यहाँ दाखिला चल भी रहा है, आप दोनों आज ही फॉर्म भरकर दे दीजिए, क्योंकि जो पहले आएगा उसका दाखिला पहले किया जाएगा। बस तुम अपना BPL कार्ड या फिर SC/ST का प्रमाण पत्र साथ जरूर लेकर आना।
2: देखा, मैंने कहा था ना,
3: आज मेरा सपना सच हो गया। मैडम जी धन्यवाद, और हरिया तुम्हारा भी धन्यवाद,
2: और शिक्षा के अधिकार कानून का भी धन्यवाद।
1: बिल्कुल ठीक, शिक्षा का अधिकार हमारा,
4: हर सपना सच हुआ हमारा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: वो जमाना याद है। सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमून की इशाअत पर मुकदमा चला। अदालत ने उन्हें 2 साल कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई और 500 रुपए जुर्माना किया। जेल में हसरत ने किस तरह शबो रोज गुजारे, उनके इस शेर से अंदाजा किया जा सकता है।
1: कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, कट गया कैद में माह रमजान भी हसरत, घरचे सामान शहर का था ना इफ्तारी का।
0: कैद से रिहाई के बाद हसरत के सियासी ख्यालात में और शिद्दत पैदा हो गई। हसरत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाया शायर, अदीब और सियासतदान हैं। एक मर्तबा कानपुर के एक सौदागर जो हसरत से अकीदत रखते थे, उनसे मिलने आए तो देखा कि वो कुछ लिख रहे हैं।
2: जी आदाब, बजा लाता हूँ जनाब, मोहानी की खिदमत में।
1: अरे आप, आदाबर्ज, आइए आइए, तशरीफ रखिए।
2: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
1: माफ कीजिएगा, जरा एक मजमून लिख रहा था, बस अभी आपसे मुखातिब होता हूँ।
2: कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, आप आराम से अपना काम करें।
1: जी बस
0: जी। हसरत लिखते जाते और बीच बीच में उन सौदागर से बात भी करते जाते। हसरत की पुश्त पर एक फटा पुराना पर्दा लटक रहा था। वो पर्दे के पीछे से कुछ निकालते और मुंह में रख लेते और डेस्क पर रखी गुड़ की डली से थोड़ा गुड़ खा लेते। सौदागर साहब खामोशी से देखते रहते।
1: जनाब बस जरा सी देर और बस, यूं समझिए खत्म ही हुआ चाहता है।
2: जी जी, आप इत्मीनान से काम करें, बाखुदा मैं मजे में हूं।
1: ये थोड़ा सा अजीब है, लिख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कैसे पूछूं।
0: जब जब्त ना हुआ तो अर्ज किया,
1: मोहानी साहब
3: जी,
1: ये पर्दे की ओट से निकाल कर आप क्या खा लेते हैं? कुछ खादिम को भी आता हो?
3: चलिए फटी हुई बनियान दिखा ही देते हैं आपको।
1: क्या मतलब?
0: हसरत ने पर्दे के पीछे से मिट्टी की हंडिया निकाली जिसमें सूखी रोटियां पानी में भीगी हुई थी।
3: ये लीजिए, खा लीजिए मियां, फकीरों का खाना तुम रईस ना खा पाओगे।
1: क्या सूखी रोटी पानी में भीगी हुई?
3: आज तीसरा फाका है, शुक्र है सूखी रोटी मयसर हो गई, बड़ी तस्कीन हो गई।
1: या खुदा,
3: नौश फरमाइए मियां,
1: लाइए
3: खाइए।
4: हम मशकूर हैं उन तमाम शूरा और सुखनवर हजरात के जो मुशायरे में शरीक हो रहे हैं।
0: हसरत मुशायरों में भी शरीक हुआ करते थे। मुशायरों के मुंतजमीन शूरा को सफर खर्च और कलाम सुनाने का मुआवजा बंद लिफाफे में पेश करते थे।
3: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गजल का आखिरी शेर है, मुलायजा फरमाए।
5: इरशाद ग्रामी
3: है, मश्के सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी।
6: वाह क्या बात है, मश्के सुखन जारी
3: चक्की की मशक्कत भी।
6: वाह,
3: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी।
6: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत।
5: क्या बात, क्या
0: बाद में मुंतजमीन ने उनकी खिदमत में लिफाफा पेश किया।
6: जना क्या खूब गजल कहते हैं आप।
2: मोहानी साहब, मुशायरे की रौनक बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी शुक्रिया तो आप सब जनाब का, आपने इस नाचीज को मौका दिया।
6: मोहानी साहब, आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये लिफाफा हमारी तरफ से।
2: जी नहीं नहीं नहीं, मोहानी साहब ये तो महज टिकट का खर्च है जनाब।
3: माफ कीजिए, मुझे सफर का खर्च नहीं चाहिए।
2: नहीं, दरहकीकत बात यह है कि मैंने सफर पर कुछ खर्च ही नहीं किया है।
6: क्या?
2: जी, अब एक गार्ड मुझे अपने साथ डिब्बे में बैठा कर ले आया, टिकट तो नाचीज ने खरीदा ही नहीं।
3: अरे मोहानी साहब, शेरो शायरी पसंद करते हैं वो गार्ड साहब, चंद अशआर सुनाए, सुकून से सफर कट गया। बस वो आज वापस जा रहे हैं गार्ड साहब, ये टिकट हम फिर से वापस चले जाए।
6: आप भी मोहानी साहब। लेकिन मोहानी साहब, नाचीज को इतनी खिदमत का मौका तो थी।
3: नहीं माफ कीजिए, ये तो आपके साथ ज्यादती होगी, मैं खामखा खर्च कैसे ले सकता हूँ आपसे।
2: मोहानी साहब, खामखा खर्च कैसा?
3: देखिए जनाब, जब मैंने कुछ टिकट पर खर्च ही नहीं किया तो आपसे इखराजात लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
6: मोहानी साहब, आपसे लफ्जों में नहीं जीत सकते हम। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।
0: उस जमाने में स्वदेशी तहरीक शुरू हो चुकी थी। इस तहरीक का मतलब था कि अपने ही मुल्क की बनी हुई चीजें खरीदी और इस्तेमाल की जाएं, विदेशी माल का बायकॉट किया जाए। उन्होंने खद्दर का इस्तेमाल पहले ही शुरू कर रखा था। अवाम में भी स्वदेशी माल के इस्तेमाल को राइज करने के लिए हसरत ने अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में एक स्वदेशी स्टोर खोला जो कामयाबी से चला। 1920 में हसरत अलीगढ़ को खैरबाद कहकर कानपुर आ गए और यहाँ भी एक स्वदेशी स्टोर कायम किया। हसरत मोहानी अपने एक दोस्त के घर में मेहमान थे, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी।
6: अरे लीजिए ना हसरत साहब, थोड़ा तो और लीजिए।
3: बस बस भाई, अब तो बहुत ज्यादा हो गया।
7: आपने कुछ खाया ही नहीं?
3: कुछ नहीं खाया, यहाँ गला कह रहा है कि माफ करो भाई, खाना गले तक आ गया। वैसे आज ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही?
7: जी बजा फरमाया आपने, आज तो भला की ठंड है। मैं अभी आपको कंबल देता हूँ, ये लीजिए। आपका सोने का इंतजाम यहाँ कर दिया है, अब आप आराम करें।
3: इतना खूबसूरत और मुलायम कंबल।
7: जी और काफी गर्म भी है। इसको ओढ़ के चैन से सोइए।
3: शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
7: जी शब्बा खैर।
3: शब्बा खैर। बला की ठंड है, लेकिन इतना कीमती और मुलायम कंबल, लगता है विदेशी माल है। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं ओढ़ सकता। मैं मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ देसी चीजें ही इस्तेमाल करने का हक है और यही मेरा फर्ज भी है। तो जनाब कंबल जी, आप तशरीफ उधर ले जाए। अरे हसरत, तू रात बेकंबल ही गुजार ले।
0: हसरत रात भर सर्दी में कांपते रहे, मगर वो कंबल नहीं ओढ़ा, इस ख्याल से नहीं ओढ़ा कि ये विदेशी माल है। हसरत एक सच्चे मजहबी इंसान थे, उन्होंने नात और मनकबत के अलावा श्री कृष्ण की शान में भी अशार लिखे हैं।
3: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का, पैगाम हयात जाविदा था, हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
0: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन हैं। लेकिन सच पूछिए तो उनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है।
3: हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज।
8: भगत सिंह।
9: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
8: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
9: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
10: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध देशभक्त थे। चाचाओं के कंधे पर चढ़कर घूमने वाले भगत सिंह ने बचपन से ही देशभक्ति और निर्भीकता का पाठ पढ़ा था। वे अभी 12 वर्ष के ही थे कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के हुक्म से सैकड़ों निहत्थे निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला गया। भगत सिंह के बालक मन पर इस घटना का बड़ा गहरा असर पड़ा।
11: कौन है?
12: मैं हूं अमरो, भगत सिंह। पर तू इतनी रात को यहाँ आंगन में बैठी क्या कर रही है?
11: तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी भाई। कहाँ चले गए थे तुम?
12: तीर्थ करने चला गया था अमृतसर।
11: अमृतसर? अच्छा, दरबार साहब में मत्था टेकने गए थे क्या?
12: नहीं बहन, मैं तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को मत्था टेकने गया था, जहां त्योहार के दिन सैकड़ों बेकसूर निहत्थे बंदों का खून गिरा था। ये देख,
11: ये इस शीशी में क्या है?
12: इस शीशी में खून से रंगी वही मिट्टी है।
11: हाय रब्बा, इस खून वाली मिट्टी का क्या करोगे वीर जी?
12: मैं इसकी पूजा क्या करूंगा अमरो? ये मिट्टी मुझे देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों की याद दिलाएगी। तू देखना बहन, इसी मिट्टी से शहीदों की नई फसल पैदा होगी। अंग्रेज सिर काटते काटते थक जाएंगे, मगर हम सिर कटाते नहीं थकेंगे। और अब उन्हें हमारा देश छोड़कर जाना ही पड़े।
11: धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो थाने में रपट हो जाएगी।
12: अच्छा ही है, अंग्रेजों की पुलिस जान जाएगी कि एक और दीवाना सिर कटाने को तैयार हो गया है। हाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में।
9: स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उनकी जान पहचान अपने जैसे कई और आजादी के दीवानों से हुई। इन लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा का गठन किया। जल्दी ही इनका संपर्क उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्रांतिकारी संगठनों के साथ हो गया। उत्तरी भारत के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी इनके पास आते जाते रहते थे। ये सब लोग दिन रात देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते।
10: फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। भारत की दशा पर विचार विमर्श करने के लिए बनाए गए इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस बात का जमकर विरोध किया। हर जगह इस कमीशन का स्वागत काले झंडों और साइमन गो बैक के नारों से किया गया। अक्टूबर में साइमन कमीशन लाहौर आया। इसके विरोध में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। पुलिस अपने जुलूस पर अंधाधुंध लाठियां बरसाईं। बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पूरी तरह जख्मी हुए और कुछ समय बाद इन्हीं चोटों के कारण उनका देहांत हो गया।
12: भगवती भैया, लाला जी की मौत का बदला लेना ही होगा।
13: वो तो ठीक है भगत सिंह, मगर हम बदला किससे लेंगे? लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले सिपाही भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई थे।
12: हाँ, मगर उन्हें लाठी चलाने का आदेश देने वाला तो अंग्रेज था, सुप्रिंटेंडेंट स्कॉट। मुझे लाला जी के बदन पर पड़ने वाली एक एक चोट की कसम है, मैं स्कॉट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
9: चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। स्कॉट को पहचानने वाला साथी जयगोपाल अपनी साइकिल ठीक करने के बहाने थाने के ठीक सामने रुका हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर को थाने से निकलते देख उसने इशारा किया। उसका इशारा पाते ही आजाद और भगत सिंह साइकिल पर आगे बढ़े। राजगुरु पैदल थे। इन लोगों ने पलक झपकते ही अंग्रेज अफसर का काम तमाम कर दिया। साथ में एक भारतीय सिपाही चानंद सिंह भी मारा गया। ये लोग साइकिलों पर सवार होकर भाग निकले। इन्हें बाद में पता चला कि ये मरने वाला अंग्रेज अफसर स्कॉट नहीं बल्कि उसका सहयोगी सॉन्डर्स था। लगभग उसी समय भगत सिंह ने तय किया कि वे अपनी बात बाहरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक धमाका करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकने की योजना बनाई गई। इस बम से जोरदार धमाका हुआ। हॉल में धुआं भर गया लेकिन इससे कोई भी घायल नहीं हुआ। इसके बाद वहां क्रांतिकारी विचारधारा को स्पष्ट करने वाले गुलाबी रंग के पर्चे फेंके गए और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। हालांकि आजाद नहीं चाहते थे कि भगत सिंह गिरफ्तार हों। वे बम वाली घटना के दिन भगत सिंह और दत्त को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का पूरा प्रबंध कर चुके थे लेकिन भगत सिंह ने स्वयं ही गिरफ्तारी, जेल और फांसी का रास्ता चुना।
10: और ऐसा हुआ भी। 28 मार्च सन 1931 को क्रांतिकारी गतिविधियों के फलस्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरकर अमर हो गए।
0: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत।
14: सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है का मन पसंदीदा कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खासतौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
3: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
4: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
5: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए, जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है। और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं। तो वो उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सके। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे FPOs को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
4: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
6: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे, बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट, ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
4: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
5: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको, ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं, काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
4: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
2: रेडियो टांटिया भी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना। कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भी 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस व्हीली गीत को सुना और ये गीत खासतौर पर विवाह में बजाया जाता है। तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
2: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
3: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए, सबसे पहले तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
1: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाएं। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
3: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
4: अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
0: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: आदिवासी जय जोहार जय जोहार जय जोहार।
1: पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
2: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
3: वक्त होता है एक छोटे से विराम का, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ। सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो आपनी बातें।

0: जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
1: हमारे देश में रबी की प्रमुख फसल है। इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी, उन्हीं की जुबानी।
2: लेकिन साथियों, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बनी रही आपके हर्ष मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था, और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया, और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी एमबी प्लाऊ से जोत निकाली, उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे जिसको कभी किसान जोतता नहीं है उसको तोड़ने के बाद में और मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
1: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
0: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है, और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब

0: इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
1: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
0: मैंने 33 किलो बीज की बचत करी, उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए, और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है कि ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लोग नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को, 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है, उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अब इसे अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है, इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है, और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपनी कृषि विस्तार अधिकारी सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथ ही हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यार से गीत को। नमस्कार।

0: शराब मारे थोड़ा सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM।
2: आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

0: पर। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: क्या पता क्या खबर फिर होगा, क्या क्या पता क्या खबर।
0: जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम हमेशा करते हैं, किसी भी एक विषय के विशेषज्ञ को हम हमारे प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत से बहुत कुछ सीखते हैं जिससे हमारा जीवन थोड़ा और बेहतर हो जाए। कई चीजें जो हम कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं, कई बार हम उनको जाने देते हैं, इन महानुभावों से बातचीत करके हमें वो चीज वैलिडेट हो जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो हम अपनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ प्रमोद दुबे जी हैं। प्रमोद दुबे जी स्पीकिंग कला के विशेषज्ञ हैं और भारत के विख्यात आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग केंद्र के संस्थापक और संचालक हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल मंचों पर वो अपनी स्पीचेस दे चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत में और भारत से बाहर भी प्रमोद जी से जुड़े हुए हैं। कई ब्यूरोक्रेट्स, टीचर्स, पुलिस, वकील, सभी को अलग अलग मौकों पर प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग भी दे चुके हैं प्रमोद जी। तो प्रमोद जी ने कई सारी किताबें भी लिखी हैं जो बहुत जीवन की मर्म स्पर्शी कहानियों से भरपूर है। पर प्रमोद जी स्तंभकार भी हैं, लेखक भी हैं, विचारक भी हैं। तो आज हम प्रमोद जी से जिंदगी जीने के कुछ और फाइन गुर सीखने की कोशिश करेंगे। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं
2: धन्यवाद,
0: मैं गुजारिश करूंगा आपसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हमारे सुनने वालों के लिए 2 शब्द कहिए।
2: और निश्चित तौर पर केवल हम अपनी बात को जब कहते हैं तो उसके मर्म को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसके भाव को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जब भी हम अपनी उपस्थिति को, अपनी प्रेजेंस को अपनी पहचान में तब्दील करने में सफल होते हैं तो जिंदगी भी सफल होना शुरू हो जाती है। यही आर्ट ऑफ स्पीकिंग का मूल ध्येय है।
0: बहुत खूब प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हुए, इस प्रोग्राम को जारी रखते हुए, शुरू करते हुए मैं एक बिल्कुल इंसान से जुड़ा हुआ ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसको लोग जानते हैं, कई बार उसका जवाब भी पा जाते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में उसको उतार नहीं पाते, उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसको अपना नहीं पाते। पूछना आपसे ये चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, हम खुश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, छटपटाते भी हैं, दुखी भी होते हैं। प्रमोद जी हमें बताइए ना, हम दुखी क्यों होते हैं? ऐसा दुख का क्या कारण हो जाता है, हमारे चारों तरफ घेर लेता है हमें? तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन केमिकल जो हिस्ट्री है या जो केमिस्ट्री है हमारे शरीर के अंदर जो चलती है हार्मोन्स को लेकर, उनसे दुखी तो हम एक ही प्रकार का होते हैं। तो दुखी होते क्यों हैं हम?
2: इसका बहुत पहले, आज से लगभग 2600 साल पहले बुद्ध ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। और उन्होंने कहा था कि उपेक्षा का भाव यदि आप रखते हैं, मतलब ना तो ज्यादा खुश हो खुशी में और ना ज्यादा दुखी हो दुख में, तो यदि आप ये भाव को अपने अंदर सजो सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप दुख से भी काफी डिस्टेंस बना लेते हैं, दूरी बना लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपकी अपेक्षाएं ज्यादा होती है और आपके अनुरूप चीजें नहीं होती हैं तो दुख आपके आसपास घेरने लगता है, आपको परेशान करने लगता है। अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं वो केवल कष्ट हैं। तो भाव में जो चीज घटित होती है वो दुख है और जो अभाव में घटित होती वो कष्ट है। आप कष्ट को यदि दुख मान लेंगे तो जीवन फिर कुछ भी बचेगा नहीं, फिर तो हर चीज में आपको केवल दुख और दुख ही नजर आएगा। तो इसलिए आपको इसके बीच के अंतर को पहचानना पड़ेगा कि दुख क्या है और कष्ट क्या है। तो कष्ट जो है वो कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकता, आप कष्ट से बड़ी आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। और कष्ट जो है आपके संघर्ष में आपके लिए ज्यादा बेहतर रास्ते खोलते चला जाता है। लेकिन दुख आपको हमेशा डिप्रेशन, आपको हमेशा हताशा, निराशा और अवसाद की स्थिति में लेकर चला जाता है। तो आपको ये फर्क महसूस करना पड़ेगा। तो दुख का जो कारण है वो केवल यही है कि आपके अनुरूप चीजें नहीं होती हैं, और तो एक भाव प्रकट होता है, और यदि वो भाव सघन हो जाए तो वो दुख में तब्दील हो जाता है।
0: होता क्या है प्रमोद जी कि हम साधारण इंसान हैं, और बहुत ज्यादा प्रबुद्ध हो जाएं, बहुत ज्यादा अगर हम समझदार हो जाएं, बहुत सारी किताबें हम पढ़ लें, बहुत ज्यादा हम विचार विमर्श करें, तो हम जरूर दुख और कष्ट के बीच के फर्क को समझ पाएंगे। लेकिन एक साधारण इंसान, एक सीधा साधा इंसान, जो मिडिल क्लास फैमिली, जो चुपचाप अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और दरअसल हमारा देश इस तरह के इंसानों से ही भरा पड़ा है, उनके लिए प्रमोद जी आप क्या कहेंगे? उन्हें एक बिल्कुल साधारण भाषा में समझाइए कि हम दुखी क्यों होते हैं।
2: देखिए, जितना भी ज्यादा हम बड़े सपनों की तरफ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अपेक्षा रखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके दुख में ही इसको कन्वर्ट करके रख देगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ड्रीम्स हैं वो सारे के सारे बर्डन में तब्दील हो जाते हैं, एक वजन बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। तो ये दुनिया जो है, खासतौर पर हिंदुस्तान, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे सपनों से ही व्यक्ति चला रहा है इस हिंदुस्तान को, और ये हिंदुस्तान को काफी परेशानियों से दूर रखे हुए। यदि सबकी अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं वो डिजायर है, वो सारी की सारी महत्वाकांक्षा में बदलते देर नहीं लगती है। और जब आप महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, और यदि पूरा हिंदुस्तान ही महत्वाकांक्षी हो जाए, ये पूरी दुनिया महत्वाकांक्षा से ग्रसित हो जाए, बीमार हो जाए, तो निश्चित तौर पर फिर दिक्कत आएगी। इसलिए मैं हमेशा छोटे लोगों का, जो अपने काम में मशगूल हैं, जैसा आपने कहा कि वो अपने में ही लगे हुए हैं और अपने जीवन यापन को सही तरीके से जी रहे हैं, भले उससे उनकी अर्निंग छोटी हो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि वो तल्लीनता से अपने काम में लगे हुए हैं, छोटे छोटे सपनों को जी रहे हैं, तो वो मेरे लिए निश्चित तौर पर एक वरदान की तरह है, और मैं उनका उपासक हूँ, और वो बेहतर लोग हैं। और इसलिए जीवन में मेरा ये मानना है कि आप छोटे छोटे सपनों को बुनते चले जाएं, राष्ट्रपति का पद तो अपने आप मिलने लगता है।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया प्रमोद जी, क्योंकि दरअसल अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हम उनको पूरा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, और अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम आगे कुछ अचीव भी नहीं करेंगे। तो पूरा समाज, पूरा सोसाइटी, पूरा देश, पूरा स्टेट, समूह, कोई भी ग्रो ही नहीं करेगा। तो सपने देखना तो जरूरी होता है। हाँ, आपकी ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है।

0: एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तब हम दुखी होते हैं। हमें पता नहीं चलता हमने उम्मीदें कुछ ज्यादा लगा ली और फिर वो टूटी और फिर हम दुखी हुए। बहुत खूब प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा इसी सवाल से थोड़ा सा संबंधित, कोई भी साधारण इंसान, कोई भी साधारण व्यक्ति अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता?
1: दरअसल लक्ष्य तक इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने के पहले वह दूसरे लक्ष्यों को और खड़ा कर लेता है, मतलब फोकस हटा लेता है। यदि फोकस वो कायम रखे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, और हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकता है यदि वो केवल अपने डायरेक्शन को निश्चित बना कर रखे, एक डिग्री का भी फर्क उसमें ना होने दे, उसको डाइवर्ट ना करे। वो हम दरअसल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और लगातार बदलते रहते हैं अपनी चीजों को, इसलिए हम सही दिशा में पहुंच नहीं पाते। आप दिल्ली जाना चाहते हैं और दिल्ली जाते जाते ऐसा लगे कि यार नहीं, मैं बॉम्बे होते हुए दिल्ली पहुंचूंगा, तो निश्चित तौर पर दिल्ली दूर हो जाएगा। तो आपको हमेशा एक डायरेक्शन अपना निश्चित कर ही आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में सफलता आपके कदमों में आने लगेगी, आपके लक्ष्य आपको प्राप्त होने लगेंगे।
0: बहुत खूब। दोस्तों गौर कीजिए, प्रमोद जी ने एक बहुत ही काम की बात बताई है कि जो भी लक्ष्य जब हम तय करें तो उस पर पूर्णतया फोकस्ड रहें, उन हमारा ध्यान जो है हमेशा केंद्रित होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं इसीलिए नहीं पहुंच पाते। मैं मानता हूं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के वक्त अलग अलग होता है, कुछ एक महीने में, कुछ एक साल में, कुछ पांच साल में। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेट जो है वो 5 ईयर प्लान्स बनाती हैं कि 5 साल बाद हम कहां पहुंचेंगे। इंटरव्यू में बच्चों से पूछा जाता है कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, तो ये वो लक्ष्य निर्धारित करने के इशारे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि हम फोकस्ड रहें, जैसा प्रमोद जी ने कहा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात है। प्रमोद जी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो करीब करीब 99% लोगों के दिमाग में होता ही है, 1% बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके दिमाग में यह सवाल नहीं होता। वो सवाल यह है कि साहब जीवन में पैसा कितना जरूरी है?
1: निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है कि खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं,
0: कम भी नहीं।
1: तो मैं लेकिन ये बात पहले नहीं मानता था, लेकिन जब से एयर प्यूरिफायर आया है, मतलब हवाएं भी
0: साफ होने लगी,
1: बिकने लगी, हवाएं भी जब बिकने लगी
0: जी,
1: तो निश्चित तौर पर मुझे भी लगने लगा कि पैसा सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है
0: जी।
1: आने वाले समय में इसकी क्या अहमियत होगी ये तो अभी नहीं बता पाता, लेकिन अभी तो ये उत्तरोत्तर गतिमान है, और जैसे जैसे ये चीजों को और जरूरी चीजों को जो हमको वैसे ही प्राप्त है, ईश्वर ने हमें दी है, जो कुदरत की तरफ से हमको सरल, सहज और सुलभ है, स्वाभाविक रूप से मिल रही है, यदि वो भी हमको पैसे से खरीदना पड़े तो निश्चित तौर पर फिर पैसे की अहमियत तो हमको मानना ही पड़ेगी। हम इस मुगालते में नहीं रह सकते, धोखे में नहीं रह सकते कि पैसे की कोई अहमियत नहीं है। पैसा लगभग खुदा की तरह होता चला जा रहा है, अब इसे कैसे रोक पाएंगे ये हम लोगों को तय करना है, देखना है।
0: नहीं तो प्रमोद जी इसी चीज से एक सवाल छोटा सा और निकल के आता है, हमें इसको रोकने की जरूरत ही क्या है? क्या पैसा बुरा होता है, हमें बुरा बना देता है जो हम इसे रोकने की कोशिश करें?
1: देखिए बाकी चीजों की अहमियत को जो चीज कम कर दे, जीवन की स्वाभाविक वृत्तियों को जो रोक दे, तो ये एक अलग तरीके के संघर्ष में हमको धकेल रही है। और जितने भी अपराध होते हैं आपने देखा होगा उसके पीछे यदि कोई बड़ा रीजन है तो वो पैसा है, सबसे बड़ा रीजन जो है वो पैसा है, चाहे वो हत्याएं हो रही हो, चाहे दीगर तरीके के आपराधिक या अभी साइबर क्राइम हो रहे हैं, इन सब के पीछे यदि कोई है तो वो पैसा है। इसलिए आपको पैसे की अहमियत को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको उसकी औकात बताना ही पड़ेगी। लेकिन आज की तारीख में तो ये सच्चाई आपको मानना ही पड़ेगी कि उसने अपनी औकात आपकी औकात से कहीं बड़ी कर रखी है, और उसकी अनिवार्यता आपके जीवन में बहुत ज्यादा हो चली है, और इसलिए वी हैव लर्न टू कोऑपरेट विद द इनेविटेबल। आज की तारीख में तो हमें उस अनिवार्यता के साथ सहयोग करना सीखना ही पड़ रहा है, मजबूरी होती चली जा रही है।
0: प्रमोद जी थैंक यू सो मच। लेकिन अनिवार्यता की बात की आपने, अनिवार्यता मतलब नेसेसिटी, जरूरत, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, अनिवार्य है। जैसे पानी पीना हमारे लिए अनिवार्य है, खाना खाना हमारे लिए अनिवार्य है, पैसा इतना जरूरी होता चला जा रहा है, यानी कि मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है सर कि हम बना रहे हैं पैसे को जरूरी, हमने बना दिया, अदरवाइज पैसे के तो खुद हाथ पैर नहीं थे जो वो इतना अनिवार्य हो गया, हमने उसको अनिवार्य बना डाला। लेकिन हमने कैसे उसको अनिवार्य बना डाला? शायद बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, शायद बड़े बड़े घर लगा लिए, शायद बहुत सारी EMIs क्रिएट कर ली, शायद दुनिया को दिखाने के लिए कि हम भी बड़े हैं हमने पैसे को अनिवार्य बना डाला। आपका क्या कहना है प्रमोद जी इस बारे में?
1: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या है कि इच्छाएं जब तक के आपके जीवन में है वो आपको गतिमान बनाए रखती है और आपके जीवन की पूर्ति भी करते रहती है और आपके जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास भी बनाए रखती है, इच्छाएं, डिजायर। लेकिन जब भी इस डिजायर को आप एम्बिशन में तब्दील कर लेते हैं, मतलब बड़ी गाड़ी, दूसरों से भी बड़ी गाड़ी, घर, दूसरों से भी बड़ा घर, बैंक बैलेंस, दूसरों से भी बड़ा बैंक बैलेंस, मेरी चीजें दूसरों से ज्यादा बेहतर दिखे, ये भावना, ये महत्वाकांक्षा है। और जब महत्वाकांक्षा में डिजायर तब्दील होना चालू होती है कि ये आम मैं खाऊं लेकिन दूसरा कोई खा ना पाए, ये चीज मेरे पास तो रहे लेकिन दूसरे के पास ना दिखे, मैं अलग दिखूं, अलहदा दिखूं, जुदा दिखूं, लोगों से कुछ सुपीरियर रहूं मैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये महत्वाकांक्षा में जब तब्दील होने लगती है चीजें, तो निश्चित तौर पर जीवन दुरूह हो जाता है, कठिन हो जाता है। और यही जो आप कहना चाह रहे हैं कि महत्वाकांक्षाओं को आप यदि कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको इच्छा के स्तर पर ना रखेंगे, तो फिर आपके लिए जीवन कठिन होता चला जाएगा। और इस तरीके की अनिवार्यताओं को यदि आप क्रिएट करते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए जो नई चीज पैदा होती है वो होती है अयोग्य महत्वाकांक्षा। एक होती है योग्य महत्वाकांक्षा और दूसरी होती है अयोग्य महत्वाकांक्षा। योग्य महत्वाकांक्षा की जो आप होना चाहते हैं वो होने की क्षमता आपके अंदर है, लेकिन आप जो हो नहीं सकते, जो क्षमताएं आपके अंदर नहीं है, जो स्किल नहीं है, जो ईश्वर ने आपको वो गुण भेजा नहीं है, आपके पास है नहीं, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन आपका बाप उसे आपको डॉक्टर बनाने के लिए उतावला है, पैसे का इस्तेमाल करता है, ये अयोग्य महत्वाकांक्षा है। और जब अयोग्य महत्वाकांक्षा का बोलबाला हो जाएगा इस दुनिया में, तो इस दुनिया रहने के लिए सही जगह नहीं रह जाएगी, थोड़ी कठिन हो जाएगी, और वही हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप जितना जल्दी औकात दिखा दें पैसे को, उतना ही जल्दी आप अयोग्य महत्वाकांक्षा पर भी लगाम लगा पाएंगे, अंकुश लगा पाएंगे, उसे नियंत्रित कर पाएंगे।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही सर, बहुत ही प्यारी बात कही। दोस्तों इस बात पर गौर कीजिएगा, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं में फर्क है, पहचानिए कहीं आपकी अयोग्य महत्वाकांक्षाएं तो नहीं हो रही हैं। जैसा प्रमोद जी ने बिल्कुल सही कहा, आप डॉक्टर बनने लायक नहीं हैं, लेकिन आपको जबरदस्ती पैसे के बल पर डॉक्टर बनाया जा रहा है, ये अयोग्य महत्वाकांक्षा है। जैसे बंदर के हाथ में अगर उस्तरा दे दिया जाए तो वो क्या हाल बनाएगा किसी गंजे का, यही काम हो जाएगा। महत्वाकांक्षाओं को पहचानिए कि वो योग्य है या नहीं, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। प्रमोद जी बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। चलिए थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं और आपसे जानना चाहूंगा, आज की जिंदगी में, आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में, जब डेवलपमेंट इतना कुछ हो चुका है, क्या सच्चा प्रेम मौजूद है दुनिया में?
1: बिल्कुल, जब भी आप कुछ देते हैं, जब भी आप देते हैं
0: जी,
1: और यदि लेने की भावना इससे जुड़ी नहीं होती तो वो प्योरिटी है, वो पवित्र है, वो सच्चा प्रेम है। लेकिन जैसे ही इसमें लेने की भावना भी जुड़ जाती है तो सच्चा प्रेम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपेक्षा में
0: जी,
1: और सच्चा प्रेम फिर सच्चा प्रेम नहीं रह जाता। तो जितने समय आप देने की स्थिति में रहते हैं, मतलब आप सच्चे प्रेम की स्थिति में, आप उसको रियलाइज भी ना कर पाए, आप उसे समझ भी ना पाए, तब भी वो सच्चा प्रेम ही है। बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, आप उसे दूध दे रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, आप उसे प्यार दे रहे हैं, आप उसकी केयरिंग कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा का सारा सच्चा प्रेम है। जीवन में किसी दूसरे के लिए भी आप इसी भावना से जब काम करते हैं तो सच्चा प्रेम है। वो जब तक सच्चा प्रेम है जब तक आप उसमें कुछ लेने की अपेक्षा ना जोड़ दें। अब एक राजा के यहां 3 लड़कियां पैदा हुई। अब उसने कहा इस राजपाट को चलाने के लिए तो एक, इस वंश परंपरा को चलाने के लिए, इस संतति नियमन के लिए एक लड़का होना बहुत जरूरी है जो इस राजपाट को संभाल सके। अब वो बच्चा पैदा करने में लग गया है और एक लड़का चाहता है। अब ये जो चाहत है, ये जो अपेक्षा पैदा हो गई है, ये सच्चे प्रेम की वजह से पैदा नहीं हुई, अपेक्षा के साथ ही, इसलिए इसमें सच्चा प्रेम नहीं है। अब वो बच्चा बड़ा होगा क्यों? क्योंकि उसकी वंश परंपरा को चलाएगा। अब उससे अपेक्षा चालू हो गई पैदा होने के पहले ही, अभी वो अस्तित्व में आया ही नहीं है, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। तो सच्चा प्रेम तब तक बना रहता है जब तक के कुछ लेने की इच्छा आपकी उससे जुड़ ना जाए। तो जीवन में आप देखिए कि इस अवस्था को जितना ज्यादा आप बढ़ा सके, जितना लंबा कर सके, उसको एंजॉय कीजिए। वो सच्चा प्रेम है और ये सच्चा प्रेम बहुत कम आता है जीवन में, तो आप उसकी अवधि को जितना ज्यादा दीर्घ कर सके, लंबा कर सके, तो वो इस मानवता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और खास तौर पे आपकी सोल, आपकी आत्मा के लिए, आपकी बीइंग के लिए, आपके होने के लिए, आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए इस जीवन में वो बहुत वैल्यूबल होगा, बहुत कीमती होगा वो।
0: जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। विचार करने की जरूरत है इसके ऊपर, गहन विचार करने की जरूरत है, और एक बार ही बस आपसे बातचीत करके इसका समाधान निकलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जहन में इसी आपके जवाब से संबंधित हजारों सवाल और उठ रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है। क्योंकि आज के जमाने में एक तरीके का सच्चा प्रेम या वो मौका जब मैंने किसी को कुछ दिया और कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, मुझे कब मिलता है मुझे याद ही नहीं, क्योंकि बिना एक्सपेक्टेशंस के तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मैं किसी को नमस्ते भी करता हूं तो उम्मीद करता हूं कि वो पलट के नमस्ते करे।
1: बिल्कुल।
0: खैर आगे बढ़ते हैं सर। लोगों के बारे में आप भी तो लाखों लाखों हजारों हजारों लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लोगों के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत निराश कर देती है अंदर ही अंदर?
1: अधीरता, अधेर, जो भी व्यवहार में तब्दीलियां आती है लोगों के, वो केवल उनके धीरज खो जाने की वजह से आती है। और धीरज केवल एक ही अवस्था में आता है, जब आप व्यवहार को आचरण में तब्दील करते चले जाएं। ये समझने वाली बात है, क्योंकि आप जितना भी जीवन में व्यवहार कर रहे हैं, जो अभी आपने कहा कि मैं नमस्ते भी यदि किसी को कर रहा हूं तो इस अपेक्षा में कर रहा हूं कि वो भी मुझे नमस्कार करे
0: जी।
1: और बाय द वे कहीं वो ना कर पाया तो निश्चित तौर पर एक दुश्मनी की लकीर, एक खरोच आत्मा पे चली आती है। और हो सकता है कि दूसरी बार वो दिख भी जाए तो आप उसकी तरफ देखे भी ना, केवल इसलिए क्योंकि आपने अपेक्षा पाल के रखी हुई थी। तो जीवन में जितना भी हम व्यवहार कर रहे हैं वो सारा का सारा अपेक्षा की वजह से। व्यवहार की परिभाषा ही यही है मेरी दृष्टि के अंदर, कि जो भी काम आप जीवन में कर रहे हैं यदि वो अपेक्षा के साथ करते हैं तो वो व्यवहार है, वो सारा का सारा व्यवहार है। किसी को 1000 रुपए दिए तो 1000 की अपेक्षा आपके मन में पलना चालू हो जाती है, ये आपने व्यवहार किया। शादी विवाह में जाते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, किसी की खुशी में, किसी के दुख में, आप अपेक्षा के साथ जाते हैं और ये सारा का सारा व्यवहार है, सामाजिक व्यवहार है ये। लेकिन यदि ये व्यवहार में अपेक्षा खत्म हो जाए तो वो आचरण में तब्दील हो जाता है।
0: तो क्या इसी बात से आप निराश हैं?
1: बेसिक चीज है।
0: तो लोगों की जो ये अपेक्षाएं हैं वो चीज आपको निराश करती है?
1: वो एक्चुअली धैर्य जो है वो धैर्य व्यक्ति खो देता है। आपने नमस्कार किया जैसे आपने बताया और सामने वाला नमस्कार नहीं कर पाया तो ये एक अलग तरीके अधैर्य में आपको ले जाता है, आपका धीरज खो देते हैं आप
0: जी।
1: अब और उसकी वजह से रिलेशंस को भी खत्म कर लेते हैं। मैंने कहा कि आचरण जितना ज्यादा बलवान होगा, आचरण जितना ज्यादा होगा और व्यवहार जितना कम होगा, आचरण आपका सारा का सारा वो है जिसमें आप अपेक्षा नहीं रखते, लगभग अपेक्षा से रिक्त होते हैं। माता पिता के पैर पड़ लेते।

0: ये शांति ही आपके व्यक्तित्व को द्विगुणित करेगी, बहुगुणित करेगी, अद्वितीय करेगी, बेजोड़ करेगी, बेनजीर करेगी।
1: जी बहुत खूब, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इंसान हैं, जैसा मैंने पहले भी एक बार बोला इस बात को, और क्योंकि प्रकृति ने हमें बाकी प्रकृति में मौजूद प्राणियों से अलग बनाया है, इस सेंस में कि हम महसूस ज्यादा करते हैं। ये तो जानवर भी महसूस करते हैं, पारिवारिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऊपर हैं, हम लोग सारा आगे बढ़ गए हैं, हमारे अंदर भावनाएं बहुत अलग अलग तरह की उजागर होती ही रहती हैं। उतनी ज्यादा भावनाएं जानवरों में नहीं होती, वो बहुत सीधे साधे तरीके से अपनी जिंदगी को जीते हैं। और जो सबसे भारी भरकम भावना इंसानों के मन में चलती ही रहती है वो होती है डर। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये महसूस होता है प्रमोद सर कि ये पूरी दुनिया चल ही डर की वजह से रही है, क्योंकि हम एक दूसरे से डरते हैं, हम स्थितियों से डरते हैं, हम परिस्थितियों से डरते हैं, हम चारों तरफ के एनवायरमेंट सबसे डरते हैं, इसलिए हम चल रहे हैं। हम कमाते इसलिए हैं कि हमारा परिवार का पेट भरा रहे, नहीं तो वो हमें छोड़ के भाग जाएंगे, ये एक डर। हम गाड़ी इसलिए खरीदते हैं कि दूसरे के पास है, हमारे बीवी बच्चे हमें कोसेंगे, तो ईएमआई ले ली तो ईएमआई पूरी करने का डर। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, नहीं मिलेगी तो माँ बाप भी डांटेंगे और समाज में हमारा क्या स्थान रहेगा, तो ये डर। हम सीखने के लिए नहीं पढ़ते, हम नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं, तो चारों तरफ डर का ही माहौल है। इस डर पर काबू कैसे पाया जाए?
0: जरूरत नहीं है
1: जी,
0: डर पर काबू पाने की कतई जरूरत नहीं है। जब भी आप कैलकुलेशन के साथ जीवन को जीते हैं तो डर को कम कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं
1: जी।
0: आपका कैलकुलेशन, आपकी गणना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, अनिष्ट ना हो जाए, ये आपके डर को खत्म कर देता है, लेकिन आपके जीवन जीने के मजे को भी खत्म कर देता है और आपको एक ऐसी जगह लेके जाता है जिसको आप कब्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा।
0: तो आपको डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है। डर यदि आ रहा है तो ये सौभाग्य की बात है, और डर हमेशा अज्ञात में आता है, और अज्ञात में जब आप छलांग लगाते हैं, जब भी अज्ञात में आप छलांग लगाते हैं, यही तो आपके साहस को जन्म देता है, और साहस से बड़ा कोई गुण होता नहीं है। और डर में ही साहस की छलांग लगती है, और डर अज्ञात में पैदा होता है। तो जो साहस के गुण को आपके अंदर विकसित कर दे, साहस आपके अंदर दे दे, उसको खत्म करने की क्या जरूरत है, उसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, उसको आने दीजिए, उससे लड़ना सीखिए और उससे पार जाना सीखिए, नए रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिनके जीवन में डर आया नहीं वो कभी आगे बढ़े नहीं है, वो हमेशा एक संकुचित दायरे के अंदर ही रहते चले गए हैं। और जो भी बाप, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को डर से दूर करना चाहते हैं, और यही हम कर रहे हैं, उसको असुरक्षा से दूर कर देते हैं, उसको सुविधाओं में पाल लेते हैं, असुविधा से दूर कर देते हैं, उसको अपमान से दूर कर देते हैं, उसको संघर्ष से दूर कर देते हैं, अरे हम कर क्या रहे हैं, हम उसके डर को खत्म कर रहे हैं। इसलिए तो वो एक शब्द है हिंदी का, लल्लू बना दिया
1: जी।
0: ये जो हम बना रहे हैं, दरअसल हम उसके अंदर की जीवन जीतने की चेतना को, उसकी चैतन्यता को खत्म करते चले जाते हैं। डर उसको चैतन्य बनाए रखता है, तो डर को बने रहने दीजिए, डर को खत्म करने की कदापि जरूरत नहीं है।
1: बहुत खूब भाई, वाह, बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव। दोस्तों गौर कीजिए, ये आज प्रमोद जी ने सिक्के का एक दूसरा पहलू हमें बताया है। बात बिल्कुल ठीक है, कई तरीके के विज्ञापन भी हमें दिखाई देते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन आज प्रमोद जी ने इनको दूसरे शब्दों में हमें बताया है कि अगर डर हमारा खत्म हो जाएगा ना, तो हम ग्रो करना बंद कर देंगे, हम लड़ना बंद कर देंगे, लल्लू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बताया प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक नए परिवेश में एक नए पर्सपेक्टिव को देने के लिए। तो प्रमोद जी आगे बढ़ते हैं, आज की डेट में जब अभी आपने एक जिक्र किया, एक बात कही कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को सुविधाओं में पालते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं,

0: डर खत्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे माहौल में बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, लड़ना कैसे सीखेगा? तो इसी बात से संबंधित एक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहा है। काफी समय से फैमिलीज जो है, परिवार जो है, वो न्यूक्लियर होते चले जा रहे हैं। मियां बीवी, एक बच्चा या दो बच्चे, काम खत्म। पुराने जमाने में संयुक्त फैमिलीज हुआ करती थी, सारे मतलब मम्मी पापा दादाजी दादाजी बहन भाई सब, मतलब 10-12 लोगों का परिवार होता था। तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर था, उसका एक अपना एक नियम कानून होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे, सब ठीक है। आज की डेट में न्यूक्लियर हो गए, एक मम्मी पापा और एक बच्चा, तो वो सब जो संस्कार थे वो तो खत्म हो गए। तो ऐसे समय में जो माँ बाप हैं, जो माताजी पिताजी हैं, मतलब जो आज के नए यंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं और क्या संस्कार दे रहे हैं उनको, क्या देने चाहिए? प्रमोद जी, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
1: ये परवरिश तो कर ही नहीं पा रहे हैं
0: जी।
1: उसका कारण ये है कि कभी उन्होंने देखा ही नहीं, परिवार के अंदर वो है और उनका बच्चा है। जैसा आपने कहा न्यूक्लियर फैमिली, तो जब न्यूक्लियर फैमिली होगी तो वो सीखेंगे कहां से? संस्थाएं सिखाती हैं, जो पारिवारिक संस्थाएं थी पुरानी, वो सिखाती थी कि परवरिश का स्वरूप कैसा होगा। रामायण कैसे आपके रक्त में, आपके जीवन में रच बस जाएगी, आप किस तरीके से उनके गुणों को, पुरुषोत्तम को अपने जीवन में उतार पाएंगे, कैसे आप उत्तम आचरण को जी पाएंगे, ये तो सिखाया जाता था। अब एक माता पिता एक बच्चे को लेके जीवन में चल रहे हैं, उनको खुद अनुभव नहीं है, दूसरों को पालते हुए वो उन्होंने कभी देखा नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है उनकी। तो पहला बच्चा जब आता तो वो तो केवल पहले बच्चे को बलि का बकरा बनाते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट तो उसके ऊपर करते हैं
0: जी।
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब दूसरा बच्चा उनके जीवन में आता है तो वो ज्यादा बेहतर निकलता है। पहला तो उनके लाड़ प्यार में ही खत्म हो जाता है, दरअसल उसे परवरिश का ओवरडोज मिल जाता है। और ये परवरिश का ओवरडोज केवल इस वजह से मिलता है क्योंकि एक बच्चा है, जितना लाड़ प्यार देना दे दो, वो खिलौना हो जाता है उनका। और खिलौना ऐसा हो जाता है कि लाड़ प्यार में वो केवल और केवल बेजान हो जाता है। वो संघर्ष, डर और उन तमाम तरीके के गुणों से वंचित रह जाता है जो जीवन में आपको सुदर्शन और बेहतर बनाते हैं।
0: मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ, प्रमोद जी, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मैं किसी मतलब बाजार में जाते हैं हम, या किसी रेस्टोरेंट में या ढाबे में खाना खाने जाते हैं, या ज्यादातर ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा के अपनी बातचीत में मशगूल होते हैं, और वो छोटा बच्चा जिसको बेचारे को अपनी चड्डी तक उतारना नहीं आता कि वो जाके पेशाब कराए, वो मोबाइल में डूबा हुआ होता है, बहुत दुख होता है। ये क्या परवरिश है? ये बच्चा आगे बढ़कर क्या बनने वाला है? जॉम्बी के अलावा वो बच्चा बनेगा क्या? तो इस बारे में प्रमोद जी कुछ कहिए प्लीज।
1: देखिए, पहले जीवंत मोबाइल हुआ करते थे, चलते फिरते मोबाइल हुआ करते थे। शायद आपकी भी उम्र का यदि मैं अंदाजा लगा सकूं
0: जी,
1: तो आपने भी अपना जीवन जब जिया होगा तो इन चलते फिरते मोबाइल के साथ जिया होगा।
0: नाना जी, नानी जी, दादा दादी,
1: तमाम तरीके के बच्चे आपके साथ रहते होंगे
0: जी हाँ।
1: घर के बाहर भागते होंगे आप, क्योंकि आपको एंगेजमेंट चाहिए, और वही एंगेजमेंट आज जो पैदा हो रहा बच्चा उसको भी चाहिए, लेकिन उसके समीप में, उसके आसपास में वो कोई है नहीं जिनके साथ वो खेल सके, तो उसकी जरूरत कैसे पूरी होगी? तो सबसे आसान और सरल उपाय माता पिता को लगता है, जो कामकाजी हैं, जो कहीं व्यस्त हैं, वो सबसे आसान उपाय उनके लिए है कि इस बच्चे को खामोश करना है तो इसको एक यंत्र दे दिया जाए, और वो मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल में वो एंगेज हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक छोटे छोटे क्लस्टर बनाने की जरूरत है आज की तारीख में समाज के अंदर, और ये कुछ पद्धति से आपको सीखना पड़ेगा, गुरुकुल प्रणाली से आपको सीखना पड़ेगा कि यदि ठीक है आप दो से ज्यादा बच्चे नहीं कर सकते, एक से ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहते हैं, वैसे ये भी स्थिति बदलने वाली है बहुत जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले तो प्रकृति खुद बैलेंस कर लेती थी पॉपुलेशन को। जीवन में जितने भी साइंटिफिक गतिविधियां बढ़ी है, जो नए आविष्कार हो रहे हैं, दरअसल हम इसके अभिशाप को आज की तारीख में नाप नहीं पा रहे हैं, इसको इसलिए इसको अलाउ कर रहे हैं, इसको आने दे रहे हैं जीवन में। और ये बच्चे का कॉन्सेप्ट भी जब हमने लाया था, तब हम इसके अभिशाप से वंचित थे, इसके आकलन नहीं कर पा रहे थे कि ये होगा क्या इसका आगे भविष्य। और आज उसके दुष्परिणाम हमको समझ में आने लगे हैं। आज लगने लगा कि नहीं, ज्यादा बच्चे होना चाहिए। विज्ञान हेल्थ ने भी इतनी उन्नति कर ली कि जो अधमरा व्यक्ति है उसको भी पूरी जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका ये जीवन में ज्यादा उपयोग नहीं है। मानवता के नाम पर हम उसको जिंदा जीने चले जा रहे हैं। कभी कभी तो ब्रेन डेड व्यक्ति भी जिंदा रहते हैं
0: जी।
1: हॉस्पिटल्स ने भी एक कारोबार बना लिया है, और वो बड़े बड़े सिस्टम है, जीवन बचाने वाली प्रणालियां है, उनके ऊपर व्यक्ति को डाल दिया जाता है और उनमें सांस फूकी जाती है बेजान लोगों में, और कई साल तक वो जिंदा रहते हैं। आखिर इसका उपाय क्या है? आखिर इनका उपयोग क्या है? आखिर इन्हें क्यों कष्ट में रखा हुआ है? और ठीक इसी तरीके से हमारे जीवन में भी इतनी ज्यादा दवा, इतनी ज्यादा चिकित्सा पद्धति प्रणालियों की दखलंदाजी बढ़ चुकी है कि जो व्यक्ति मर जाना चाहिए वो व्यक्ति भी जिंदा है। तो बैलेंस कहां से करे प्रकृति, पॉपुलेशन बैलेंस कहां से करे? तो एक समय ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी कि वापस प्रकृति हावी हो जाएगी और प्रकृति अपने आप बैलेंस करने लगेगी। अभी कोरोना आया था बैलेंस करने के लिए, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आप जब एक बच्चा पैदा करेंगे तो उसके दुष्परिणाम जो है ये आपके अंदर से आपको खत्म करते ही चले जाएंगे। बहुत ज्यादा ये जिंदगी रहने वाली नहीं है इस तरीके के उपायों के सहारे। तो बहुत जल्दी ही हम अंदर से खत्म हो रहे हैं। और तीसरा विश्व युद्ध यदि मेरी दृष्टि में कोई है जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिसकी आशंका हमारे जीवन में कि आने वाला है, वो मैं कहता हूं कि वो तो 20 साल पहले चालू हो चुका है, वो मानव के अंदर चालू हो चुका है, आपके अंदर चालू हो चुका है, और आपको वो अंदर से खत्म कर रहा है। और उसमें से एक उसका सबसे बड़ा हथियार है मोबाइल, वो आपको अंदर से खत्म कर रहा है, और धीरे धीरे वो आपको पूरा खत्म कर देगा। तब जाके आपकी आंखें खुलेगी और आप उसे एक नए आयाम देंगे, एक नई परिभाषा देंगे, और जीवन को वापस प्रकृति के सहारे छोड़ने का हौसला अपने अंदर अख्तियार कर पाएंगे।
0: बहुत खूब सर, बहुत बहुत आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही सर। मैं कई कई इंटरव्यूज में बातचीत करता हूं, लोगों का विचार जानने की कोशिश करता हूं कि साहब फर्ज कीजिए रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट बंद हो जाए हमेशा के लिए, तो आपकी जिंदगी के किस किस पहलू पर क्या क्या असर आएगा। तो लोग बड़े दुखी मन से बताते हैं कि साहब यूं देखा जाए तो हमारे पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, साहब यूं देखा जाए तो हम अच्छी नींद ले पाएंगे, यूं देखें तो आपस में बातचीत करेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन सर मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक दारू की बोतल उनके हाथ में है, जब तक उसे खत्म नहीं कर लेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। सही कहा आपने साहब, एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा ये माहौल बन चुका है। मैं कोई नहीं होता हूं ये कहने वाला कि मोबाइल ठीक है या खराब है, मैं कौन हूं ये तो हमारे सुनने वालों को तय करना होगा। प्रमोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सारी और बातें करने की मेरी इच्छा है। फिर हम आपको दोबारा से कभी आमंत्रित करेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ और बताएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। बस चलते चलते हमारे सुनने वालों के लिए कोई संदेश दीजिए प्लीज।
1: जीवन जीने के लिए है, और जीवन में कष्ट और दुख बिल्कुल नहीं है, उसके लम्हे बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए यदि कभी कोई पूछे कि आपके जीवन में दुख के कब पल आए, आप उन्हें बताइए कि जीवन में तो केवल केवल सुख के ही पल आए। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन को भरपूर जी लीजिए।
0: वाह।
1: और जीवन को जितना ज्यादा आप जिएंगे उतना ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर महसूस करेंगे। ये रूपांतरण आप कर सके, आज की इस वार्ता से आपके अंदर कुछ परिवर्तन आए, यही हमारी ख्वाहिश है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर.
1: थैंक यू सर.
2: खुल के होंगी तन्हाई में दिल की बातें.
0: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM
1: भावना। आप

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

नकारात्मकता। दोस्तों याद रखें कि जिंदगी हमेशा उस तरह नहीं चलती जिस तरह से हम चाहते हैं। ऐसे में चीजों को लेकर शिकायत करने के बजाय हमेशा चीजों के प्रति पॉजिटिव रवैया ही रखें। सफल लोगों को जब भी कभी जिंदगी में नेगेटिविटी घेरती है तब वो उससे अपनी पॉजिटिव सोच के जरिए बाहर निकल आते हैं। आपको भी चाहिए कि जिंदगी में हमेशा शिकायत करने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढें, उनसे निपटें और बस आगे बढ़ें। निगेटिविटी से लड़कर ही आप सफल हो सकते हैं। बने रहिए आरजे समीर के साथ। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगें, तो दोस्तों समझ लेना जीना आ गया है।

मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है।

जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सतेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं।

जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक

0: झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोको? तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे?
1: है समय प्रतिकूल माना, पर समय अनुकूल भी है। शाख पर एक फूल भी है, घन तिमिर में एक दिए की टिमटिमाहट भी बहुत है, एक सूने द्वार पर बेजान आहट भी बहुत है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सोनू ने पूछा, किस बात से परेशान हो? मोनू ने कहा, यार घर वालों से बहुत परेशान हूँ। सोनू ने कहा, अब घर वालों ने क्या कर दिया? मोनू ने कहा, जिस दिन सोचता हूँ कि कुछ नया करूंगा, उसी दिन गेहूं पिसवाने भेज देते हैं।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

दुख लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो पहले पानी की भाषा में आदमी की आंखों से आता है और फिर हाथों की धरोहर बन जाता है।

जो कुछ पुराना है मोहक तो लगता है, टूटने का दर्द मगर सहना ही पड़ता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बच्चा घर से मार खाकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, नहीं, नई ड्रेस पहनकर तुम्हारी बारात में जा रहा हूँ।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए।
1: वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता,
0: सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: ऑपरेशन के बाद मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या अब मैं बिल्कुल रोग मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, अरे बेटा डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ।
2: तो दोस्तों इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में बॉलीवुड के बेमिसाल कॉमेडी अभिनेता महमूद साहब के बारे में हम बात करेंगे। महमूद साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 को हुआ था। महमूद अली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने हास्य के विभिन्न रंगों को बिखेर कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वैसे तो महमूद ने हर तरह की भूमिकाओं को बखूबी निभाया, लेकिन कॉमेडी से सरोबार उनके किरदारों को अलग पहचान मिली। हो जाए उनके ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

महमूद ने फिल्मों में 4 दशक तक काम करके 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने एक्टिंग और हास्य शैली से बतौर कॉमेडियन एक अलग शैली बनाई थी। उनका अपना स्टाइल था। महमूद के लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये थी कि कई कलाकारों ने उनके पात्रों की नकल की, उनकी एक्टिंग की कॉपी करने की कोशिश की। यहां तक कि बॉलीवुड के सरताज अमिताभ बच्चन ने भी इनके हैदराबादी पात्र की कॉपी करने की कोशिश की। आइए सुने इनकी फिल्म का एक गीत।

साहब की खासियत ये थी कि वे दर्शकों को जितना हंसा हंसा कर लोट पोट कर सकते थे, उतने ही संजीदा किरदार निभाकर दर्शकों को रुला भी सकते थे। लीजिए पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

समझ लो एक उदे बेपीर हूँ। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ, या समझ लो एक

महमूद जी अभिनेता मुमताज अली के बेटे थे। यूं तो महमूद ने बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन बड़े होते होते इन्होंने फिल्मों के अलावा भी कई काम किए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों, महमूद ने अपने समय की मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की ट्रेनिंग भी दी थी। आइए उनकी फिल्म का एक गीत सुनते हैं।

0: हर कलाकार ही की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया। इन्होंने कई सालों तक जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्यासा, सीआईडी और दो बीघा जमीन जैसी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन इन्हें सामान्य रूप से अभिनय करने के बजाय कॉमेडी से ओतप्रोत किरदारों को करने में ज्यादा मजा आता था, जिसे दर्शकों के बीच भी खासा पसंद किया जाता था। इतना ही नहीं, महमूद साहब ने 1965 में भूत बंगला के साथ निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। बड़ी मजेदार बात यह है कि भूत बंगला फिल्म में इनका डांस बेहद मशहूर हुआ। आइए दोस्तों सुने यही गीत।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ।
2: आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ
1: और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: 1974 में इन्होंने फिल्म कुमारा बाप का भी निर्देशन किया, जिस फिल्म ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया और बहुत रुलाया। इसके अलावा महमूद कई फिल्मों में बतौर पार्श्व गायक भी काम करते रहे। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।
1: दुनिया, अरे किधर है रे तू?

महमूद ने कपूर खानदान की तीनों पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हमजोली में नकल कर दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पड़ोसन फिल्म में साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर का किरदार निभाकर संगीतमय कॉमेडी को जन्म दिया। आइए हो जाए यही गीत।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

एक नामी कलाकार होने के बावजूद महमूद डाउन टू अर्थ थे। इसी का नतीजा था कि वे नए लोगों को काम देने का पूरा मौका देते थे। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरा। आइए सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

0: शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
1: अरे क्या

0: अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं।
1: हाँ, जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे।
0: सच भाई हुए।

महमूद ने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा को खास करके बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था। इतना ही नहीं, इनकी जोड़ी को आईएस जौहर के साथ भी पसंद किया गया। इन दोनों ने जौहर महमूद इन हांगकांग, नमस्ते जी, जौहर महमूद इन गोवा जैसी फिल्में दी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। आइए दोस्तों सुनते हैं इनकी फिल्म का एक और प्यारा सा गीत।

0: महमूद साहब को 1963 में आई फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कई फिल्मों प्यार किए जा, वारिस, पारस और वरदान के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। आइए दोस्तों, इनकी ही फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत सुनते हैं।
1: ओहो

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर, बने रहिए मेरे साथ इस प्रोग्राम आज के कलाकार में।
1: अरे दोस्तों,

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानो जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम। गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर, जो राइटर, जो गजल कहने वाले कलाकार हैं उनका नाम है नवीन नवा साहब। बाकी की बातचीत हम नवीन जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके कलाम भी सुनेंगे। नवीन जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: बहुत शुक्रिया, मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस रेडियो स्टेशन पे बुलाया और अपने सुनने वालों से रूबरू होने का मौका अता किया है। दोस्तों मैं नवीन नवा मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ और आज बातचीत होगी गोयल साहब के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मजा मुझे आएगा उतना मजा आपको भी आएगा।
0: जरूर सर, जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछना चाहूंगा, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे नवीन साहब?
1: मैं बचपन में सिर्फ बड़ा बनना चाहता था गोयल साहब।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, मजा आ गया।
1: मैं सच में कहता हूँ कि मेरे ऐसी कोई सपने बड़े बड़े ऐसे नहीं थे। मैं बड़ा सिंपल सा लड़का था जब मैं छोटा था, छोटे गांव से था, छोटे शहर से था, तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो है वो तो बाद में पैदा हुई और भगवान की दया कहिए, दोस्तों की दुआएं कहिए, बड़ों का आशीर्वाद कहिए कि जो मैं बनना चाहता था वो बन भी गया। मैं एक प्रोफेशनल बनना चाहता था, थोड़ी उम्र हो जाने के बाद एक जवानी में एक ख्याल आया कि प्रोफेशनल बनूं, तो मैं आज वो प्रोफेशनल हूं। मैं सिर्फ शायर ही नहीं हूं, मैं इस देश के बहुत सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज में से हूं और महिंद्रा ग्रुप में कार्यरत हूं क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी कंपनी है महिंद्रा फाइनेंस, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ सर्विस में और सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं कह सकता हूँ ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कि जो छोटे छोटे सपने मैंने देखे थे वो सारे पूरे कर पाया हूँ इस उम्र तक आते आते।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब, मजा आ गया सुन के साहब। सच बोले तो आप फाइनेंस में इतनी ऊंचाइयों पर हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। फाइनेंस के व्यक्ति होने के साथ साथ आप शायर भी हैं, यानी कि आप दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोच लेते हैं, क्या बात है, बहुत खूब। और जहां तक महेंद्र की बात करें, जी
1: बड़ा प्यारा जुमला था।
0: क्योंकि अक्सर होता है ना नवीन जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती का साथ कुछ ज्यादा बैठता नहीं है, लेकिन
1: लक्ष्मी जी वैसे भी मेरे साथ बहुत नहीं रहती।
0: तो किसी लक्ष्मी के पुजारी का सरस्वती का बेटा होना ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी गजल हमें सुनाएं, हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी जरूर। देखिए मुशायरों में काफी सारा पढ़ता रहता हूं मैं और वहां पे एक तरीका होता है, एक सलीका होता है पढ़ने का जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से पढ़ूंगा और चाहूंगा कि जो लिखा है उसके साथ मेरे सुनने वाले जुड़े। एक छोटी बहर की गजल सुनाना चाहूंगा मैं।
0: इरशाद साहब, इरशाद, इरशाद।
1: देखिएगा बड़ी छोटी बहर की है और ख्याल देखिएगा इसके।
0: जी जी।
1: मतलब बस फरमाइएगा कि जो बुलाने से पहले आता है,
0: जी
1: जो बुलाने से पहले आता है वो जमाने से पहले आता है।
0: क्या बात है, वाह
1: बहुत शुक्रिया। जो बुलाने से पहले आता है वो जमाने से पहले आता है, कोई जाने पे भी नहीं जाता, कोई आने से पहले आता है।
0: हो वाह क्या बात है।
1: कोई जाने पे भी नहीं जाता, कोई आने से पहले आता है, अपने कांधों पे बोझ है ये ख्याल,
0: जी
1: सर झुकाने से पहले आता है,
0: सर झुकाने से पहले आता है,
1: अपने कांधों पे बोझ है ये ख्याल, सर झुकाने से पहले आता है, और जिंदगी है बस एक बहाना जो
0: जी,
1: जिंदगी है बस एक बहाना जो हर बहाने से पहले आता है,
0: पहले आता है।
1: जिंदगी है बस एक बहाना जो हर बहाने से पहले आता है।
0: बहुत खूब साहब,
1: थोड़ी सी गजल थी, मैंने सोचा किसी से शुरुआत की जाए।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संजीदा और बहुत ही मीनिंगफुल गजल जो बिल्कुल दिल को छू कर गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी प्यारी सी गजल के लिए। मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम पिछले सवाल में बचपन की बात कर रहे थे, अभी भी बस उसी बचपन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत बड़ा फैन हूं, और हमेशा जिनसे भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो कभी कभी निकल पड़ता है मेरे मन से कि मैं अपने मन के एक कोने को हमेशा बच्चा रखना चाहता हूं, खेलता रहना चाहता हूं, चाहे मेरी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए। तो इसी चीज से संबंधित एक सवाल कि अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: ये दरअसल अपने बचपन की बात छेड़ी, शायर हो तो मेरा एक शेर मुझे याद आ
0: रहा है। अरे वाह,
1: शेर मुझे याद नहीं रहते शेर जैसे था
0: जी जी जी जी,
1: कि मेरी पहचान ऐसे करवाना
0: जी,
1: मेरी पहचान ऐसे करवाना एक बूढ़ा जो अब भी बच्चा है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दरअसल ये सवाल मैंने सजो के रखा था, बचा के रखा था कि मैं इस प्रोग्राम के आखिरी में आपसे पूछूंगा, लेकिन मजेदार वाली बात है, आपने जवाब प्रोग्राम के पहले ही दे दिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत खुश।
1: हर एक दिल में बच्चा होता ही है
0: जी,
1: and I have loved my childhood, I still love.
0: Right sir, fantastic.
1: I'm still a child. तो मेरी बचपन की ऐसी आप पूछेंगे तो एकदम से कि बिल्कुल खास या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दरअसल मैं अपना बचपन अब से जी ही रहा हूँ, शायद ये कारण हो सकता है कि मुझे बचपन की कोई स्पेशल याद नहीं है।
0: क्या बात है ना?
1: लेकिन I have had a very very good childhood. जैसे कि आप बड़े बड़े मेहमान आपके प्रोग्राम में आते होंगे जो अपने यादें बताते होंगे कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना किया, कैसे उभरे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा बचपन रहा है मेरा, छोटे से शहर में, डोंबिवली शहर में रहते थे हम लोग।
0: जी जी जी।
1: तो उसकी स्पेसिफिक ऐसी कोई यादें नहीं है, बस थोड़ी दोस्ती की है, थोड़ी मजे की है, थोड़े थोड़े है। जैसे कि भाई एक जमाना हुआ करता था, मैं 57 साल का हो गया हूँ गोयल साहब, तो एक जमाना हमारा भी हुआ करता था जब हम काफी शरारती हुआ करते थे। तो मुझे याद पड़ता है कि हम एक बिल्डिंग में खेलने जाता था मैं, और वहां हमारा एक पक्का खेल हुआ करता था कि वहां पे सुबह सुबह एक फल वाला फल बेचने आता था।
0: ओहो।
1: तो हम यूं करते थे कि वो जैसे ही अंदर चला जाए बिल्डिंग के, तो हम में से कुछ बच्चे जो है वो पैरापिट पे उतर के आते थे उस एंट्रेंस के।
0: अच्छा।
1: है ना? और जैसे वो बाहर आता था तो उसकी टोकरी में से हम फल उठा लेते थे ऊपर से, और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता था कि दो केले गायब हो गए या दो संतरे नहीं रहे बड़े मजे से खाते थे। तो ऐसी बहुत सारी शरारतें थी बचपन में
0: जी।
1: उस वक्त पेड़ भी काफी हुआ करते थे, फिर वो बेर के झाड़ के पास जाके बेर गिराना, बिल्डिंगों पे चढ़ना, कूदना, पालना, वो सारी मस्तियां तो की है बचपन में
0: जी,
1: तो ऐसा। लेकिन मैं शहर का बच्चा रहा तो गांव की यादें जो खूबसूरत होती है वैसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी दोस्तों की यादें हैं, बहुत सारे प्यारे लोगों की यादें।
0: बहुत खूब।
1: लेकिन मेरे ख्याल से वक्त नहीं हो गया।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी, ये होता ही है साहब। तो आगे बढ़ते हुए बस अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बता दें जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: जी वैसे तो बहुत सारे हैं पसंदीदा गायक, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब गजल की बात आती है तो दो नाम तो सामने आते ही है, एक तो गुलाम अली साहब का है
0: जी,
1: और एक जगजीत सिंह साहब का है
0: जी। बिल्कुल सही।
1: तो मेरे पसंदीदा गायकों में ये दोनों आते ही है
0: जी,
1: है ना? और मैंने इस तरह चुनने की कोशिश की है जो आप आसानी से बजा सके, मेरे भी पसंद के हैं वो गाने
0: जी।
1: तो देखिए गुलाम अली साहब ने गजल गाई है जो हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
0: जी।
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद,
0: क्या बात है, क्या
1: हमको अब तक आशिकी का वो
0: जमाना याद है।
1: अगर ये गजल सुना सके तो बड़ी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए दोस्तों सुनते हैं नवीन जी के हुक्म पर ये बहुत ही प्यारी सी गजल गुलाम अली साहब की गाई हुई।

0: तो बहुत ही प्यारी गजल के बाद नवीन जी आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक और प्यारी सी गजल हमें सुनाएं।
1: जी जरूर सर। मैं ज्यादातर ऐसे कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो गजलें सुनाऊं इसके बाद की करूंगा कोशिश की जो पसंद की जाती है बहुत ज्यादा
0: जी जी
1: तो उससे लोग जुड़ पाएंगे सुनने वाले, है ना
0: जी।
1: एक मेरी गजल है, दूसरी छोटी बहन की गजल है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, पसंद की जाती है और जब भी मैं खड़ा होता हूं तो मुझे एक रिक्वेस्ट आती है कि ये सुनाई जाए।
0: क्या बात,
1: सुनिएगा लुत्फ उठाए इसका। इसकी रदीब जो है बहुत अलग है पर उसका ख्याल बहुत अलग है।
0: जी स्वागत है इरशाद।
1: सुनिए। ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर
0: जी,
1: ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, जाने क्या क्या टंगा है खूंटी पर।
0: ओहो।
1: नींद आने पर आंख पहनेगी
0: जी,
1: अब सुनिएगा खूंटी पर क्या क्या टंगा।
0: जी,
1: नींद आने पर आंख पहनेगी वो जो सपना टंगा है खूंटी पर।
0: ओहो क्या बात है, क्या बात है।
1: शुक्रिया। नींद आने पर आंख पहनेगी वो जो सपना टंगा है खूंटी पर।
0: जी,
1: धूप की राह देखता हूं मैं
0: जी,
1: मेरा साया टंगा है खूंटी पर।
0: ओ ओके।
1: धूप की राह देखता हूं मैं मेरा साया टंगा है खूंटी पर। अब ये शेर सुनिएगा कि एक बस्ता टंगा है एल्बम का।
0: जी,
1: एक बस्ता टंगा है एल्बम का, एक जमाना टंगा है खूंटी पर।
0: एक जमाना टंगा है,
1: एक जमाना टंगा है खूंटी पर।
0: बहुत खूब।
1: और ये शेर देखिए कि तुमने वादे को टांग कर रखा।
0: जी,
1: तुमने वादे को टांग कर रखा, अब भरोसा टंगा है खूंटी पर।
0: वाह वाह वाह,
1: तुमने वादे को टांग कर रखा, अब भरोसा टंगा है खूंटी पर।
0: बहुत खूब।
1: और इस तरह के लोगों से हम मिलते ही हैं तो उन पर एक शेर है कि उसके चेहरे पे एक खूंटी है।
0: जी,
1: उसके चेहरे पे एक खूंटी है और मुखौटा टंगा है खूंटी पर।
0: ओ माय गॉड।
1: उसके चेहरे पे एक खूंटी है और मुखौटा टंगा है खूंटी पर।
0: बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात है।
1: और आखिरी शेर यू है कि काम खूंटी से क्या उतारोगे।
0: जी,
1: काम खूंटी से क्या उतारोगे जब इरादा टंगा है खूंटी पर।
0: वाह।
1: काम खूंटी से क्या उतारोगे जब इरादा टंगा है खूंटी पर।
0: क्या
1: ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, जाने क्या क्या टंगा है खूंटी पर।
0: माय गॉड, बहुत खूबसूरत साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लफ्जों के साथ बहुत ही जबरदस्त कारीगरी, जो कलाकारी लफ्जों के साथ आपने दिखाई साहब, मजा आ गया। यही तो होता है शायरों के साथ, बस यही तो खूबसूरती है कि उनको लफ्जों को इस्तेमाल करना आता है, किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को अलग तरीके से पेश कर देते हैं तो नजारा ही बदल जाता है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। खूंटी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल तो पहले कभी किसी ने सोचा भी ना होगा।
1: जी, ये बहुत पसंद की जाती है, ज्यादातर युवाओं में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है ये गजल।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नवीन जी, ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए बस एक छोटा सा सवाल, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप जैसे शायर से तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सा जवाब मिलने वाला है इसका। फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला जिन्न कहीं से मिल जाए तो क्या तीन इच्छाएं हैं आपकी?
1: मैं कहूंगा आपके जैसे दो और मिल जाए।
0: ओ माय गॉड। भाई वाह, भाई वाह, बस बस बस इसी तरीके के जवाब का इंतजार कर रहा था मैं। ओ गॉड,
1: एक शायर का जवाब नहीं तो एक कंपनी सेक्रेटरी का जवाब।
0: तो एक शायर का जवाब भी बताइए ना सर।
1: मैं कहूंगा कि भाई आप मुझे तीन इच्छाएं क्या देंगे, आप पूछिए आपकी तीन इच्छाएं, मैं देता हूँ
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जिंदगी में सब दे चुका है, मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी ने भगवान ने सब कुछ दे दिया है,
0: जी, जी,
1: मेरी
0: जी।
1: कोई इच्छा अधूरी आज तक छोड़ी ही नहीं है,
0: जी जी
1: ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो या इस फोरम में मैं अपने अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनके सामने कि वो मुझ पर इतने मेहरबान रहे हमेशा।
0: बहुत खूब साहब, बहुत खूब। और जो सबसे पहले बात आपने कही वो भी बहुत ही प्यारी है कि जिनको आप ही कहेंगे कि देख भाई तू सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है, शायद किसी ने तेरी इच्छा तो कभी पूछी ही नहीं, चल तू बता तेरी इच्छा क्या है।
1: बिल्कुल, शायद मैं पूरी करता हूँ।
0: बहुत बहुत खूब। अरे बस सर, वो तो रोता रोता गीला गीला होके गिर पड़ेगा। वाह वाह, क्या कहा है। तो अब फिर से आपके पसंदीदा किसी गजल गायक की हमें गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा दें।
1: जी जरूर, ये तो आप मुझ पर उपकार कर रहे हैं ऐसी गजलें सुना के, बहुत दिनों के बाद सुन रहा हूं मैं भी, मौका नहीं मिलता है।
0: जी
1: तो जगजीत सिंह साहब की तरफ आते हैं।
0: जी
1: वैसे आदमी साहब की गजल उन्होंने गाई थी इस फिल्म के लिए, अर्थ फिल्म के लिए, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
0: बहुत बहुत संजीदा,
1: तो सुना सके,
0: बहुत ही संजीदा, बहुत ही खूबसूरत गजल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नवीन जी की फरमाइश पर ये प्यारी सी गजल जगजीत साहब की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए नवीन जी, मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक गजल हमारे श्रोताओं को और मुझको और सुना दीजिए।
1: जी जरूर। देखिएगा एक गजल, ये थोड़े से दकीक कहते हैं, इससे कि कठिन उर्दू अल्फाज का इसमें इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन मैं अर्थ बताकर उसका रसभंग नहीं करूंगा।
0: जी
1: सुनने वाले समझ जाएंगे। सुनिएगा कि मतलब यूं है कि घर में कुछ और इजाफा हुआ तामीर के बाद।
0: जी, जी।
1: ये वैसे मैं वजाहत नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ कर सकता हूँ। ये खुदा से, अल्लाह से, भगवान से कहा गया है।
0: जी।
1: ये अशार जो उनसे कहे गए हैं कि घर में कुछ और इजाफा हुआ
0: जी।
1: तामीर के बाद, एक दीवार बनी थी तेरी तस्वीर के बाद।
0: क्या बात है।
1: घर में कुछ और इजाफा हुआ तामीर के बाद, एक दीवार बनी थी तेरी तस्वीर के बाद, और ख्वाब लगता हूं तो फिर देख मुझे लुत्फ उठा।
0: जी।
1: ख्वाब लगता हूं तो फिर देख मुझे लुत्फ उठा, मैं दिखाई नहीं दूंगा तुझे ताबीर के बाद।
0: ताबीर के बाद। जी बहुत खूब।
1: कुछ घड़ी रख दे कहीं दूर जरा लौह कलम।
0: जी।
1: कुछ घड़ी रख दे कहीं दूर जरा लौह कलम, आलम में वज्द रहेगा नहीं तहरीर के बाद।
0: बहुत खूब।
1: बाद जंजीर के भी मैं न रिहा हो पाया।
0: जी।
1: बाद जंजीर के भी मैं न रिहा हो पाया।
0: जी।
1: पांव लोहे के हुए थे मेरे जंजीर के बाद।
0: ओह माय गॉड। ओके बहुत खूब।
1: बाद जंजीर, बहुत शुक्रिया। बाद जंजीर के भी मैं न रिहा हो पाया, पांव लोहे के हुए थे मेरे जंजीर के बाद। और शेर आखिरी है इस गजल का, जंग के बाद यहाँ अमन भी तो आएगा।
0: जी।
1: जंग के बाद यहाँ अमन भी तो आएगा, हल चलाना भी सिखाना मुझे शमशीर के बाद।
0: शमशीर के बाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया गोविंद साहब। जंग के बाद यहाँ अमन भी तो आएगा, हल चलाना भी सिखाना मुझे शमशीर के बाद।
0: क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो शास्त्री जी की जय जवान जय किसान वाली कहानी हो गई कि साहब, शमशीर चलाने के बाद हमें हल चलाना भी सिखाना, क्योंकि एक ही रोल में इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, कई रोल बदलता है, कई चेहरे बदलता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और हम सब जिम्मेदारियों को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं इस दुनिया में। शमशीर अपनी जगह है और हल अपनी जगह है। बहुत खूब, क्या कहा है साहब, मजा आ गया।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो नवीन जी, आगे बढ़ते हुए एक फिर से मासूम सा सवाल, आपका आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: खाने तो बहुत सारे पसंदीदा है। I'm a bit of a foodie, rather I was before I had a bit of a cardio issue. बड़ा अजीब सा खाना है जो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है, शायद इसलिए कि मेरी माँ ने बचपन से मुझे वो खिलाया था।
0: जी।
1: उस डिश को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो राइस होता है
0: जी,
1: उसमें थोड़ी सी क्रीम डाली जाती है दूध की
0: जी,
1: और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है
0: जी,
1: और उसे मिक्स करके मेरी माँ मुझे दिया करती थी।
0: अरे वाह।

0: चावल चावल के साथ में थोड़ा सा दूध का क्रीम और थोड़ा सा नमक, थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन था, लेकिन लोग ट्राई करें करिए, है ना। जो
1: बिल्कुल
0: चावल हो बहुत ज्यादा सूखा हुआ नहीं हो, थोड़ा सा
1: जी
0: गीला सा हो,
1: जी जी जी जी
0: पका हो, और इसमें मिक्स करके आप खाए, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको।
1: कमाल है, बहुत खूब बहुत खूब। बिल्कुल प्रिसाइसली ये इंग्रेडिएंट्स तो नहीं, लेकिन बचपन में और अब भी कभी कभी थोड़ा सा गीला चावल जो होता है, जैसे आपने फरमाया, उसमें हम लोग घी डाल के और फिर नमक मिर्च डाल के खा लेते हैं बस। तो
0: वाह, ये भी ट्राई करूंगा।
1: हाँ, क्रीम क्रीम की जगह घी हो जाता है और कुछ नहीं, और अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट आता है साहब। मजा आ जाता है जब कुछ ज्यादा पकाने की इच्छा ना हो या मैडम की ज्यादा पकाने की इच्छा ना हो, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से एक एक कटोरी इस तरीके से चावल खा के खुश हो जाते हैं। क्या बात है। सिंप्लिसिटी इन लाइफ ऑलवेज इज ब्यूटिफुल। एक्चुअली हम लोग जबरदस्ती उसको बहुत सारे जामा पहना के, बहुत सारी लाइटें लगा के उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखा जाए तो वो
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: बड़ी सादगी वाली चीजें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बहुत खूब बहुत।
0: मैं क्या बात कहना चाहूंगा, छोटी सी आई
1: प्लीज प्लीज,
0: कि हम लोग लाइफ ओरिएंटेड कम होते जा रहे हैं और लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड ज्यादा होते जा रहे हैं।
1: वाह,
0: ये है,
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है सर। हम स्टाइल ज्यादा मारने लगे हैं और जीने कम लगे हैं, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की हमें गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
0: जी, तो तलत अजीज साहब की तरफ आते हैं।
1: क्या बात है,
0: गजल है कि वखदूम मोहिउद्दीन साहब जो थे, जो उनकी लिखी हुई गजल है
1: जी,
0: बहुत सारे गजल गायकों ने गाई है। तलत अजीज साहब ने बहुत अच्छी धुन पे से गाया था कि चिड़छिड़ी रात फूलों की,
1: क्या बात है,
0: रात है या बारात फूलों की। तो ये गजल अगर आप सुना सके तो
1: बहुत ही प्यारी गजल साहब, बहुत ही प्यारी गजल। बिल्कुल बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए दोस्तों सुनते हैं तलत अजीज साहब से उनकी प्यारी सी ये गजल नवीन जी की फरमाइश पर।

0: बहुत खूब नवीन जी, आपसे फिर गुजारिश करूंगा, मन नहीं भर रहा है, एक गजल और सुना दीजिए।
1: जी बहुत शुक्रिया, सुनाता हूँ। ये गजल भी जो है सिंपल सी गजल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। ज्यादातर मैं इसी से इख्तिताम करता हूँ अपनी हर पेशकश का, मुशायरों में कही है, नसीहतों में कही, कारण आपको आखिरी शेर में पता चल जाएगा। मैं मोहब्बतों का शायर जाना जाता हूँ, मैं कौमी यहजहती का शायर जाना जाता हूँ, बहुत सारी जगह। तो सुनिएगा ये गजल, मतलब देखिए और फरमाया कि नमी हो जिसकी आंखों में
0: जी,
1: वो बंजर हो नहीं सकता।
0: ओहो, ओके।
1: नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता।
0: बहुत खूब।
1: वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का जिसे हो डर,
0: जी,
1: जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता।
0: समंदर हो नहीं सकता, क्या बात है।
1: न छेड़े बादबा को जो नहीं पतवार से उलझे,
0: जी,
1: न छेड़े बादबा को जो नहीं पतवार से उलझे, किसी कश्ती को वो तूफान मयस्सर हो नहीं सकता।
0: मयस्सर हो नहीं सकता, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत
1: वो खुँ। बहुत शुक्रिया। वो फिर एक लम्ज से, खुशबू से या आहट से होता है।
0: जी,
1: लम्ज का मतलब टच।
0: जी,
1: वो फिर एक लम्ज से, खुशबू से या आहट से होता है, जो जादू सिर्फ नजरों से उजागर हो नहीं सकता।
0: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और ये शेर देखिए बतौर खास की, सुकून हो, प्यार हो या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो,
0: जी,
1: तीन तीनों के बारे में कहा है कि सुकून हो, प्यार हो या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता।
0: हो ही नहीं सकता, क्या बात है, क्या बात है, वाह,
1: बहुत शुक्रिया। सुकून हो, प्यार हो या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर

0: हो नहीं सकता, जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, और उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता।
1: हो नहीं सकता, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गजल साहब, मजा आ गया।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: नफरत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, मोहब्बत के बराबर तो कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नवीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्यारी सी गजल के लिए।
0: बहुत शुक्रिया।
1: बस ये एक सवाल जो मेरा फेवरेट सवाल है किसी भी बातचीत में, मैं ये जरूर पूछ लेता हूं, क्योंकि इस सवाल को पूछने के बाद मैं अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करता हूं कि जो साहिबान ने जो जवाब दिया, क्या मैं उसके लायक हूं भी, या मेरे लिए वो कुछ नए रास्ते खोलता है क्या। सवाल ये है सर
0: जी,
1: कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
0: मैं पहले ही कह चुका हूँ ये बात।
1: जी जी, आप जवाब वैसे पहले दे चुके हैं। वो एक शेर दोबारा सुना दीजिए, पर तो उस शेर को दोबारा सुनने के लिए दरअसल मैंने ये सवाल पूछा।
0: कि मेरी पहचान ऐसे करवाना, एक बूढ़ा जो अब भी बच्चा है।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे इस शेर को रटना होगा साहब, बहुत ही खूबसूरत सा जवाब है, और ये मेरे लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। कोई अगर मेरे से पूछेगा तो मैं ये शेर जरूर उन्हें सुना दूंगा, और कि नवीन साहब हमारे एक बहुत ही ज्यादा अच्छे अजीज दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ये शेर बताया, तो बहुत खुश।
0: दरअसल मैं इसका इसी बैकग्राउंड बताता हूँ एक वर्ड में, जहां आपको ज्यादा मजा आए सुनकर दर्शक लोग। देखिए, लोगों की पहचान पूछी जाती है तो लोग कहते हैं, मैं कहूंगा तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं शायर हूँ, या मैं 57 साल की उम्र में हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसका, ये पहचान नहीं हो सकती। आप अंदर क्या है पहचान तो वो है ना, बाहर क्या है वो पहचान किसी।
1: बहुत खूब सर, बहुत खूब।
0: अंदर अगर आप बच्चे हैं तो बताना है कि भाई आप बच्चे हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सर। एक बुक मैंने पढ़ी काफी समय पहले हो गया, राइटर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मूडी करके, और बुक का नाम है द आई फैक्टर, द आई फैक्टर। तो उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल बिल्कुल वही पूछा जो अभी अभी आपने कहा, कि कोई किसी से पूछता है आपकी पहचान के बारे में तो लोग कहते हैं कि जी मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं लॉयर हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं पॉलिटिशियन हूं, या मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, या मैं रेडियो जॉकी हूं, बट ये सारे के सारे चीजें आप नहीं हैं, ये वो काम है जो आप करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये वो काम है, ये आपकी पहचान नहीं हो सकते। अभी आपसे आपका काम हटा लिया जाए तो फिर आप क्या हैं? तो आपको अपने जमीर के, अपने शख्सियत के अंदर झांक कर देखना ही होगा, तब आप पाएंगे कि एक आप छोटे से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं जो खेलना चाहता है। आप शायद किसी एक अच्छे से बच्चे के पिता हो सकते हैं। पिता होना काम नहीं होता, पिता होना पहचान होता है। बिल्कुल सही साहब, बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही प्यारा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल हमें और सुना दीजिए।
0: जी जरूर। सो ये देखिएगा, ये गजल है, कैलाश जोशी साहब है दिल्ली से, इन्होंने इसको धूम पर बांधा, लेकिन मैं धूम पर नहीं सुनाऊंगा, मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है, आपको तहत नहीं सुनाऊंगा ये गजल, लेकिन इससे कुछ कुछ अच्छा अच्छे बन पड़े, मुझे विश्वास ये सुनने वालों को पसंद आए।
1: जी जी जरूर।
0: इसका मतलब यूं है कि चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम।
1: अच्छा जी जी।
0: चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम।
1: ओहो, क्या बात है।
0: देखिएगा इसमें कि चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम।
1: जी।
0: और ये शेर देखिए कि अ परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, रानाई मतलब खूबसूरती।
1: जी।
0: अ परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, तेरे कहने से भी सयाद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात है।
0: अ परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, तेरे कहने से भी सयाद नहीं होंगे।

0: हो गए हम।
1: बात
0: और ये देखिएगा कि अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने
1: जी,
0: अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने और कहते हैं उन्हें याद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात है।
0: अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने और कहते हैं उन्हें याद नहीं होंगे हम। और ये शेर बतौर खास लिखेगा गोयल साहब की, सिर्फ औजार नहीं बात जुनू की भी है
1: जी,
0: सिर्फ औजार नहीं बात जुनू की भी है, सिर्फ तेशे से ही फरहाद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात,
0: सिर्फ औजार नहीं बात जुनू की भी है, सिर्फ तेशे से ही फरहाद नहीं होंगे हम। और इम्तिजाज अपने अनासर का यगाना ठहरा, इसमें जरा थोड़े दकीक कठिन शब्द इस्तेमाल है, उनका अर्थ बताऊंगा। इम्तिजाज का मतलब होता है मिश्रण, अनासर का मतलब पंचतत्व जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, और यगाना मतलब यूनिक। इम्तिजाज अपने अनासर का यगाना ठहरा, फिर से शायद कभी ईजाद नहीं होंगे हम। इम्तिजाज अपने अनासर का यगाना ठहरा, फिर से शायद कभी ईजाद नहीं होंगे हम। चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात है। मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि कुछ भी कर लो बर्बाद नहीं होंगे हम। मुझे याद आ रही है इस बात पे, कुछ समय पहले मैंने अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में एक उन्होंने पढ़ा था, तो वो यूट्यूब पर भी बहुत आराम से अवेलेबल है, जहां पर उन्होंने बोला था कि कितने भी कंकड़ फेंकोगे मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, मुझे कब तक रोकोगे। बहुत खूब उन्होंने वैसे ही, तो आपकी जो ये गजल रही बहुत भारी भरकम, बहुत दिल को छू जाने वाली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस गजल को हम हफ्ता 10 दिन सुन लें तो कॉन्फिडेंस की कमी तो हमें जिंदगी भर शायद कभी हो नहीं सकती। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। नवीन जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातचीत की, आपकी सुलझी हुई बातें, नो नॉनसेंस बातें, लेकिन बहुत जज्बाती, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत मोटिवेटिंग, और फिर आपकी गजलें बिल्कुल साफ सुथरी और मैसेज के साथ, मजा आ गया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग।
1: थैंक यू सर। दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार किसान भाइयों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का, सभी किसान पंच भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और किसान साथी कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम का इंतजार भी कर रहे हैं। और तो इंतजार की घड़ी अब खत्म है क्योंकि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM जो झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो लेकर आ गया है आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और खास तौर पर हम छोटे छोटे बिंदुओं पर बातचीत करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आज के हमारे इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम स्टार्टअप पर जरूर बात करेंगे क्योंकि स्टार्टअप हमारे देश की एक महत्वाकांक्षा योजनाओं में से एक है कि स्टार्टअप में किस तरीके से हमारे किसान साथी एक आधुनिक पद्धति से, वैज्ञानिक पद्धति से और नई नई तकनीकी से किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। साथ साथ में पशुजन, जो चूंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों के इस मौसम में खास तौर पर दुधारू पशु जो दूध देने वाले रहते हैं उनका ख्याल हम किस तरीके से रख सकते हैं, क्या खान पान उसका उनका होना चाहिए, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और साथ में हम तीसरी बात बताएंगे जो हमारे कैलेंडर रहता है, मासिक कैलेंडर, यानी इस माह में हम किस तरीके से अपने पशुओं को क्या कुछ देना चाहिए उस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ में एक राजस्थान के उन्नतशील किसान जिन्होंने पानी, कम पानी वाली फसलें यानी गेहूं की प्रजाति लगाकर अपने खेती में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है, यानी खेती में उन्होंने एक लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि हम कम पानी वाली फसलों करेंगे और खास तौर पर उन लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया और आज उनका नाम सभी की जुबान पर रहता है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और साथ में आपको बता देना चाहते हैं कि कार्यक्रम खेती बाड़ी में श्रोता साथियों खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। खासतौर पर ये देखते हैं कि गर्मियों का मौसम है और इस गर्मियों के मौसम में चूंकि अभी हमारे झाबुआ जिले के हमारे साथी किसान साथी घर पर बैठे होंगे, क्या कुछ कर सकते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, आपको इस रिपोर्ट को हम सुनवाते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: आज के युवा स्टार्टअप्स के जरिए अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें आर्थिक सहायता देकर सरकार भी इनका साथ दे रही है तो वहीं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से स्टार्टअप्स के कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट।
3: भारत बदल रहा है, देश के युवा अब एक नई बागडोर संभालने को तैयार है जिसमें नौकरी तलाश करने की परिपाटी को छोड़ते हुए नौकरी देने पर फोकस किया जा रहा है और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए सरकार भी अपने अहम कदम उठा रही है जिसमें स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी की तंत्र बनाना है। स्टार्टअप देश के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका है जिसके जरिए वो खुद का काम शुरू करते हैं, खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि स्टार्टअप सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी, मनोरंजन और इंजीनियरिंग आदि सेवाओं में ही किया जा सकता है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्टअप तेजी से कारोबार के मैदान में आ रहा है। स्टार्टअप से जहां युवाओं को रोजगार मिलता है वहीं ये किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने में भी मदद करता है। इससे खेती में निवेश बढ़ता है और किसान की आय में भी बढ़ोतरी होती है।
4: हम लोग एग्री स्टार्टअप्स को यहां पे इंक्यूबेट करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं एग्री स्टार्टअप्स के लिए जो कि भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के तहत एनरोल्ड है और उन स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग स्टेजेस पर, जैसे कि यदि आपके पास अपना कोई स्टार्टअप का विचार है, आपको अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप एक अपना स्टार्टअप बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो कि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है जहां पर आप आकर उस आइडिया को कॉन्सेप्ट नोट बनाने के लेवल तक जा सकते हैं, तो वो उस उस तरीके के प्रोग्राम्स भी हम रन करते हैं। देन फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है और आप एक बेसिक लेवल पर हैं लेकिन आपको उसको फाइनल प्रोटोटाइप के लेवल तक नहीं ले जा पा रहे, तो उसके लिए अलग प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर फंडिंग्स भी एसोसिएटेड हैं। जो भी फंडिंग भी ग्रांट इन एड की तर्ज के ऊपर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरे तरह के प्रोग्राम्स वो हैं जिनके अंदर आपका अगर एक प्रोटोटाइप रेडी है और आप कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 25 लाख तक का फंड हम प्रोवाइड करते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की RKVY रफ्तार स्कीम के तहत हम उसके अंदर फंड्स दे रहे हैं। उसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए भी हम वुमेन क्वेक करके एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसके अंदर हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं कि वो कैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे ले जा सकें। तो कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो हम किसान भाइयों के लिए करना चाहते हैं जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को हम अपने स्टार्टअप्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पे FPOs को जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को हमारे स्टार्टअप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके की पहलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
3: कृषि क्षेत्र में आ रही नई नई तकनीकें भी एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मददगार साबित हो रही हैं। पूसा मेले में ऐसे ही कई इनोवेटिव आइडियाज दिखाई दिए जो कृषि को और बेहतर बना सकते हैं।
5: हमारे स्टार्टअप का नाम रैवटेक लैब्स है और हम क्वालिटी एनालिसिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ये एप्पल को स्कैन करने की मशीन बनाई है हमने। तो इसमें नॉन इन्वेसिवली बिना कट करे बिना जूस करे हम आपको बता सकते हैं कि इसकी मिठास कितनी है, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, कि ये कितने दिनों बाद सड़ना स्टार्ट हो जाएगा और ये इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितनी है। सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने बनाई है, एक ग्रेन एनालाइजर भी बनाई है जिसमें गेहूं जैसे ग्रेन्स की आप प्रोटीन कंटेंट ग्लूटेन कंटेंट नॉन इन्वेसिवली चेक करके देख सकते हैं।
3: हमने पूसा मेले में लगे एक स्टॉल में मिनी ड्रोन देखा। ये ड्रोन खेतों की रखवाली करने और सूचनाएं देने में सक्षम है। महज 8 से 10 हजार कीमत का ये ड्रोन किसानों की एक बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है।
4: ये हमारा ड्रोन है, ये ड्रोन इनोवेशन के साथ हमने एसोसिएट करके ये चीज बनाया है। तो ये बेसिकली काम ये करता है, ये आपका सर्वेलेंस का काम करता है। जैसे आप इसको ये आपके खेत में जाता है और आपके खेत में कोई भी मोशन होता है, कोई भी हलचल होती है, तो ये उस चीज को डिटेक्ट करता है और आपके फोन में इसकी फोटोज भेजता है। और इसमें स्पीकर भी लगा है, तो कोई एनिमल वगैरह आता है, जैसे अगर एक गाय आई है तो वो उसमें एनिमल किसी लायन का साउंड करेगा, तो लायन का साउंड करेगा तो उससे क्या होगा कि मतलब जो गाय है वो वहां से भाग जाएगी, वहां से हट जाएगी। तो ये आपको कुछ 10,000 का पड़ेगा एंड ये सब अलग अलग प्राइजेस है। ये आपको 6,500 का पड़ेगा एंड बाकी सब ये 4,500 का आपको पड़ेगा। एंड या दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एंड किसानों को कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा वेबसाइट है www.fifarm.com, तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। वहां पर आप लाइक साइट में जाके आप देख सकते हैं काफी सारे सामान है हमारे वहां पे, तो आप वहां पे जाके गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं।
3: अब पढ़े लिखे युवा नए नए आइडियाज के साथ कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स कर रहे हैं। कृषि उद्यमिता में नए आयामों को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से भी समय समय पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनके तहत युवाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। युवा इनका लाभ लेकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस खास रिपोर्ट को सुना, कार्यक्रम में बहुत सारी बातचीत और बहुत सारे सेगमेंट हैं जो आपको बताने हैं, लेकिन साथियों इससे पहले उनकी हम रिपोर्ट आपको साझा करें, इससे पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो आपनी बातें।

0: रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस भीली गीत को सुना और ये गीत खासतौर पर विवाह में बजाया जाता है। तो अभी आपने इसका आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी गर्मियों में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को।
1: गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। जब बात देश के उन हिस्सों की हो जहां अभी से तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है, ऐसे इलाकों में जरूरी हो जाता है कि पशु की हर तरह से समुचित सुरक्षा की जाए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से नुकसान की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए पशुपालकों और किसानों को चाहिए कि वो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। कौन से हैं वो पहलू, इस बारे में पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज से चर्चा की हमारी संवाददाता सुनैना सरकार ने।
2: किसान भाइयों बहनों, बदलते मौसम में हमें अपने दुधारू पशुओं का किस तरह ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रियाज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम आ गया है और आगे तापमान में वृद्धि होने वाली है, तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए?
3: देखिए, अभी सर्दी का मौसम गया है और अब गर्मी पूरे उत्तर भारत में शुरू हो गई है, बल्कि पूरे देश में ही गर्मी शुरू हो चुकी है। तो अब जिस तरीके से सर्दी में हमें कुछ विशेष प्रकार के ध्यान रखने होते हैं इस अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए, उसी तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी हमें कुछ बदलाव करने होंगे। जिस तरह हम खुद भी जाड़े के मौसम में सूट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो हम अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसी तरीके से पशुओं के लिए भी कुछ हमें बदलाव करने पड़ते हैं। तो अगर इसमें बात की जाए सबसे पहले, तो जो आपकी पशुशाला है, पशुशाला में वातावरण कूल होना चाहिए, ठंडा वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस समय अब गर्मी बहुत अधिक हो जाएगी तो बहुत अधिक गर्मी के कारण से पशुओं में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बनी रहती है। तो पशुओं में हीट स्ट्रोक ना हो उसको कैसे बचाना है, जो आपकी पशुशाला है पशुशाला के ऊपर आप कुछ इस तरीके की चीजें डाल दें, कुछ उसके ऊपर बोरे फट्टे इत्यादि बिछा दें कि जिससे उसकी जो छत है वो अधिक गर्म ना हो। अगर आपकी पशुशाला में बिजली की व्यवस्था है, पंखा चल सकता है, तो कोशिश करें कि आप वहां पर पंखा भी चला दें जिससे कि गर्मी को तापमान को कम किया जा सके। दूसरा क्या है, जो पशुशाला के खिड़की दरवाजे हैं उनको खोल के रखें जिससे कि हवा का पूरा आदान प्रदान होता रहे और बाहर से फ्रेश हवा पशुशाला के अंदर आए और अंदर की गर्म हवा जो है वो बाहर निकलती रहे। और आपने अगर बोरी फट्टे कुछ टांग के रखे होंगे खिड़कियों के ऊपर तो उनको भी हटा दें। तीसरा क्या है, जो दिन का बहुत अधिक गर्म समय होता है तो उस समय पे पशुओं को बाहर धूप में ना निकालें, या तो सुबह के मौसम में जब मौसम थोड़ा ठंडा होता है उस समय, या शाम के मौसम में ही बाहर निकालें, धूप में ना निकालें, अधिकतर पशुओं को अपने छाई में रखें।
1: इसके अलावा गर्मी के दिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखें जिससे पशु के शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और वो बीमारी के शिकार ना हो पाए। साथ ही आहार में क्या तब्दीलियां करें, आइए जानते हैं।
3: गर्मी के मौसम में हम उन्हें थोड़ा सा इस तरीके का आहार देते हैं कि जो ज्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला आहार हो, जिससे शरीर को थोड़ी गर्मी प्राप्त हो और जिससे कि वो ठंड के साथ में पशु लड़ सके। तो अब गर्मी के मौसम में उसको उतनी ज्यादा जो है उस तरीके के गर्मी पैदा करने वाले अनाज की आवश्यकता नहीं है या उतनी ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप उसको हरा चारा दें, उसके साथ में थोड़ा भूसा खिलाएं, और जो दलिया या खली देते हैं उसकी मात्रा आप थोड़ी कम कर सकते हैं अगर बहुत अधिक गर्मी है तो। और तीसरा बिंदु है इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो पानी का। जो पानी है वो गर्म पानी पशु को ना पिलाएं, क्योंकि एक तो मौसम का वातावरण जो है पहले ही गर्म है, ऊपर से आप उसको गर्म पानी पिलाएंगे तो वो और अपने आप में समस्या बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि पशु को ताजा ठंडा पानी ही हमेशा पिलाएं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि पशु आपका हीट स्ट्रोक में आ रहा है, गर्मी की वजह से वो चारा उसने खाना थोड़ा कम कर दिया है, तो पशु को दिन में एक दो बार ठंडे पानी से नहलाएं, तो उससे भी पशु की जो हीट स्ट्रोक है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अब जैसे बरसात का मौसम फिर आगे शुरू हो जाएगा तो उसमें कई तरीके की बीमारियां हैं, जैसे हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, ब्लैक क्वार्टर है, एंथ्रेक्स है, ये सारी बीमारियां भी होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आवश्यक है इस मौसम में आप अपने पशुओं को नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलकर जो टीके लगवाए जाते हैं बीमारियों के, वो टीके भी लगवा लें, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी आगे बहुत अधिक हो जाती है, टेम्परेचर होता है, तो सभी प्रकार के बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने के लिए लिए एक बहुत ही भरपूर वातावरण मिलता है और बहुत अधिक बीमारियां फैलती हैं। तो उनमें जो भी टीकाकरण है इस मौसम में लगने वाले, जो मैंने आपको नाम बताए, उनके टीके आप अवश्य लगवा लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। पशु को गर्मी से हीट स्ट्रोक से कैसे बचाना है उसका ध्यान रखें। और इसके अलावा यदि कोई उसमें पार्टिकुलर कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से मिलें और उसका इलाज कराएं। हाँ, एक बिंदु और है, पशुओं में इस मौसम में एक्टोपैरासाइट्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक हो जाती है, बाह्य परजीवी, उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे टिक्स किलनी वगैरह हो जाती हैं, तो उसके लिए आप अपने पशु चिकित्सक से मिलकर और उसके बाह्य परजीवियों के लिए जो दवाई आती है साइपरमेथ्रिन वगैरह, उसका 2% घोल जो है वो ऊपर से लगाया जाता है, तो बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए उसका प्रयोग करें। और पेट के कीड़े हो जाते हैं तो पेट के कीड़ों के लिए 3-4 महीने पे एक बार दवा दे देनी चाहिए, और इस समय गर्मी के मौसम में और अधिक बरसात आएगी तो संभावना रहती है पेट में कीड़े होने की, तो उसके लिए भी आप उसको डिवर्मिंग टैबलेट्स जो हैं वो खिला दें।
1: इन तमाम बातों का ध्यान रखकर पशुपालक न सिर्फ पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रख सकेंगे बल्कि उनसे बेहतर दूध उत्पादन भी लेते रहेंगे।
2: पशुओं से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर।
0: लेकिन इस कैलेंडर को जानने से पहले हम सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM, आपना रेडियो अपनी बातें।

0: ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें। मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें।
1: ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
2: वक्त होता है एक छोटे से विराम का, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ। सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपनो रेडियो, आपनी बातें।

0: जिसपे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जो गेहूं की अलग अलग विधि से बुआई करके गेहूं की अच्छी पैदावार ले रहे हैं और इसके साथ ही पानी की बचत भी कर रहे हैं। कैसे, ये जानने के लिए चलते हैं राजस्थान के जिला करौली।
1: देश में रबी की प्रमुख फसल है।
2: इसकी बेहतर उपज लेने के लिए किसान अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते आए हैं, जिससे उतनी ही भूमि में बढ़िया पैदावार ली जा सके। हम गेहूं उगाने के कई तरीकों के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन कामयाब किसान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक अलग ही विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है वो विधि, आइए जानते हैं। गेहूं की बाली को छू कर देख रहे ये है किसान शिवचरण मीणा, जो इस साल अपनी गेहूं की फसल को देख कर काफी खुश है। वजह भी साफ है, सीमित जगह, सीमित संसाधन और कम पानी में बढ़िया पैदावार, ऐसे में किसान का खुश होना लाजमी है। लेकिन शिवचरण ने ऐसा क्या किया जो उनकी पैदावार अपने इलाके में सबसे अच्छी हुई, जबकि राजस्थान की मिट्टी में खेती करना सामान्य खेती की तुलना में काफी कठिन है। लेकिन शिवचरण जी ने पहले समस्या को समझा और फिर समाधान निकाला। सबसे पहले जानते हैं उनकी मिट्टी की कहानी उन्हीं की जुबानी।
3: लेकिन साथियों, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बनिया रही आपके हर्ज मन इसके साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया फील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा खेत है बहुत क्षारीय था और इस क्षारीयता को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए हम बहुत सोच विचार किया। फिर किसान डीडी किसान चैनल के माध्यम से हमें मालूम चला कि खेती को कैसे सुधारा जा सकता है। कुछ कृषि अधिकारियों से हमने सहायता ली तो हमने देखा कि जमीन का सबसे पहले वाटर लेवल होना जरूरी है। तो हमने अपने जॉन डियर का वाटर लेवलर मशीन को खरीदा, उससे खरीदने के बाद इस खेत को वाटर लेवल किया और वाटर लेवल करने के बाद में हमने इसमें देसी खाद और सरसों का डीकम्पोज करके उसका जो डंठल थे उसको इसमें मिलाया। उसके बाद हमने इसमें करीब 18 इंची गहरी MB प्लाऊ से जोत निकाली। उससे जमीन की जो सख्त मिट्टी है नीचे 6 इंची के नीचे, जिसको कभी किसान जोतता नहीं है, उसको तोड़ने के बाद में मिट्टी पलट होने से इसमें पानी सोर्सिंग के लिए जमीन को बहुत अच्छा हो गया, जिससे ये अच्छे से पानी सोख सकती थी और उसमें फसल का गड़ना ये खत्म हो गया। उसके बाद हमने इसमें रोटावेटर लगाया और रोटावेटर लगाने के बाद जमीन एकदम भुरभुरा करके गेहूं के लिए हमने इसको तैयार किया। जो भी खाद हमने इसमें मिलाना था वो हमने मिट्टी में पहले ही मिला लिया था रोटावेटर से पहले।
1: शिवचरण जी ने इस तरह से तो खेत को उपजाऊ बना लिया, लेकिन समस्याएं अभी भी दस्तक दे रही थी और वो थी पानी की कमी। इसके लिए उन्होंने गेहूं की खेती की नई तकनीक का इस्तेमाल किया और वो थी बेड बनाकर गेहूं की बुआई करना। ये देखने और सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके परिणाम काफी सुखद रहे। तो आइए जानते हैं इस विधि के बारे में।
0: हमने बेड प्लांटर मशीन से इसमें 1 बीघा में 7 किलो बीज डाला है और उस 7 किलो बीज शुरू में तो बहुत कम लगा, लेकिन उसके बाद जब हमने इसमें दूसरा पानी 20 दिन बाद दिया तब वो अपना रिजल्ट दिखाने लगा, जिसके बाद हमने इसमें कैल्शियम नाइट्रेट पर बीघा में 1 थैली 5 किलो की और गंधक 5 किलो इसमें डाला। उसके बाद खेत में कोई पौधे को एकदम विकास बहुत शानदार रहा, क्योंकि बेड पर होने के कारण इसमें क्या होता है कि पानी जड़ें जो पानी की तरफ ज्यादा जाती हैं, क्योंकि पानी इसके जड़ों में रहता है नीचे लाइन में और पेड़ ऊपर रहता है, तो पानी हमेशा पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तरफ दौड़ती हैं। तो पानी हम इसमें नीचे दे रहे हैं तो इसकी वजह से जड़ों का विकास ज्यादा रहा और उससे पौधे का सर्वांगीय विकास हुआ।
1: आइए अब जान लेते हैं इस तकनीक से होने वाले फायदों के बारे में।
0: हमने 33 किलो बीज की बचत करी। उसके बाद पानी इसमें आधे से भी कम लगता है, क्योंकि 80% जमीन पे तो बेड बन जाते हैं, अब 20% नालियां रहती हैं, तो 20% नालियों में ही पानी देना है, जिससे अपन को सिर्फ उसमें नमी ही मिलती है पौधे के लिए और पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, पौधे को सिर्फ नमी की जरूरत होती है। और इस पौधे की ये खासियत और है, ये बेड पर होने के कारण ये गेहूं कभी प्रकृति प्रकोप या हवा से गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तो अपन को इसकी पूरी फसल मिलेगी। अगर पौधे अपन गेहूं तो अच्छे पैदा भी कर लेते हैं लो नॉर्मल भी किसान, लेकिन प्रकृति प्रकोप और हवा से उसको बचाया नहीं जा सकता अच्छा गेहूं, और गिरने के बाद गेहूं का प्रोडक्शन 50% से कम रह जाता है। तो सरकार भी यही बताती है कि पानी बचाना चाहिए खेती में, और पानी बचाएंगे तो वाटर लेवल है जमीन का वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और खेती अपन कम पानी से ड्रिप्स के द्वारा या फवारे के द्वारा या बेड प्लांटर मशीन के द्वारा बहुत कम पानी में अधिक उपज ले सकते हैं। इसमें हमने कोई क्यारी नहीं बनाई, ये वाटर लेवल होने के कारण इसको हमने कतारों में लाइनों में बांट दिया खेत को 3-4 लाइनों में, जिससे हम 2-2 घंटे में पानी का स्रोत बदल देते हैं। बाकी इसमें रात भर हमें खड़े रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसान रात में भी मोड़ता है पानी, दिन में भी मोड़ता है, तो उसको रात में बड़ी समस्या होती है सर्दियों में। तो इस विधि से करने से हम बहुत संतुष्ट रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन बाकी गेहूं से 20-25% ज्यादा रहेगा। इससे हमें साहब कम से कम आधा खर्चा आया है नॉर्मल पद्धति से गेहूं में और पानी में, और प्रोडक्शन हमारा 25% ज्यादा रहा है, यानी इसमें गेहूं 20 से 22 क्विंटल के लगभग बैठेगा और नॉर्मल पद्धति से 12 से 15 क्विंटल से ज्यादा नहीं बैठ सकता।
1: विशेषज्ञों से ली गई सलाह से शिवचरण जी के खेतों की तस्वीर बदल रही है। उनकी इस कामयाबी के साक्षी बने बाकी किसान भी अभी से अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।
2: अब तक देखा होगा कि बुवाई की पद्धति अलग अलग होती है, एक किसान छिड़कने वाली विधि से बुवाई करता है, दूसरा सीड ड्रिल से बुवाई करता है, लेकिन एक ये जो पद्धति है अभी अपनाई है, ये नई टेक्नोलॉजी और अच्छी जो उन्नत किसान है वो इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसको कहते हैं बेड कल्टीवेशन। बेड कल्टीवेशन में हमें काफी फायदा है। इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, पानी की मात्रा हमें बहुत कम उपयोग में लेनी पड़ती है और फसल बहुत ही अच्छी इसके अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी इसके अंदर फसल उपजाऊ होती है। मैं किसान साथियों से ये निवेदन करता हूं कि पुरानी टेक्निक से हटके और ये टेक्निक अपनाएं। ये जो फसल की है, ये शिवचरण मीना जी ने अपने खेत में नई टेक्नोलॉजी से ये फसल का उत्पादन किया है। मैं इससे प्रभावित होकर सब किसानों को ये बताना चाहता हूं कि एक बार देखें और ये ही तरीका आप अपनी खेती में अपनाएं, जिससे कि आपको पैसे की, खाद की, पानी की और बीज की सारी बचत हो और उपज इसमें अच्छी आप प्राप्त करें।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस प्यारे से जो बातचीत हुई उसको सुना और जाना किस तरीके से हमारे जो सफल किसान थे उन्होंने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, किस तरीके से गेहूं की नई नई तकनीकी से हम अपनी खेती को कर सकते हैं। चूंकि हम अगर झाबुआ जिले की बात करें तो झाबुआ जिले में पथरीला इलाका है, हम एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस पर अपने कृषि विस्तार अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: एम करप मारे थोड़ो सा।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
3: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
2: लेकर हाजिर है आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
2: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
3: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर आज ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
3: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
2: और आपकी आरजे वर्षा के साथ में।

0: साथियों, अभी आपने सुना इस व्हील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं, जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करे, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करे। किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों या किसी एक दलहन फसल या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: रेडियो टांट्या भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM।
0: जी हां साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
1: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
0: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
1: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
0: और आपकी आरजे वर्षा के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, મારા કાકા, મારી કાકીઓ, ઓ

0: रही थोड़ा सा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
2: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है। जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़िया गाभिन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है। साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है। इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है। ऐसी इस नस्ल का जो

0: इसके लक्षण हैं, जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है। गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है, खासकर राजस्थान की जलवायु है, उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं। साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को, जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है। साथ ही इनके जो गाभिन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है। राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गायें को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गायों को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है। और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है। गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है। साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है।
1: तो किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालन कैलेंडर पर।
2: मई माह का पशु कैलेंडर 2021। मई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है। पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें। पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें। दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें। चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें। खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें।

0: पर रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम आपरो रेडियो आपरी बातें
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी। लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने से पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बात है।
2: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दूरगामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है, इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं।
3: मैं किसान हूं, पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है वो जैविक खेती के बारे में सुना, ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बजाज ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं, बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला।
4: राजस्थान में पानी की कमी है,
3: राजस्थान में वैसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से, और फिर क्या वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 परनियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत फुरत खाद जो अपने ह्यूमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इससे बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
4: नई
3: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है।
2: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है।
3: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल लेने से बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से कि जैविक रासायनिक वाला 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और अपने क्या है तुरंत बिक जाते हैं, इसे माल भी गिराएगी भी, अपने कहते हैं यार आपकी चीज बहुत अच्छी है हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, एक दो रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं ना, अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपना स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है तो जैविक खेती अपनाओ, और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
2: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
1: और साथियों एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है, तो सबसे पहले उनको हम बताने देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है, वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
2: तो जी हाँ साथियों, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत,
2: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से।

0: ईद को।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। आज मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। आपने सुना होगा गौरी खान एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आदित्य चोपड़ा भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और हाँ, ड्रामा, ग्लैम और कॉफी के साथ करण जौहर भी एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी किसान का नाम जो फिल्म प्रोड्यूसर हो? नहीं ना? तो आज सुन लीजिए, एक नहीं, दो नहीं, 5 लाख किसान, जी हाँ, 5 लाख किसान फिल्म प्रोड्यूसर्स। और ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये एक असली सिनेमा की हिस्ट्री है। स्टोरी शुरू होती है 1970s के बीच के दौर से, जब इंडिया में ना OTT था, ना रील्स थी, ना स्किप एड का ऑप्शन था। और उस दौर में दो लोग जिन्होंने सोचा, एक दूध रेवोल्यूशन के हीरो और एक सिनेमा के डीप थिंकर। एक तरफ थे वर्गीज कुरियन, जिन्होंने अमूल को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट बनाया, और दूसरी तरफ थे श्याम बेनेगल, जो मीनिंगफुल सिनेमा के लिए जाने जाते थे। बेनेगल साहब अमूल के लिए एड्स और डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डॉक्यूमेंट्रीज लोग देख ही नहीं रहे थे। मतलब मैसेज तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऑडियंस मिसिंग। तो बेनेगल साहब ने कहा, सर डॉक्यूमेंट्री से काम नहीं चलेगा, हमें फुल लेंथ फीचर फिल्म बनानी पड़ेगी। अब आप सोचिए, 1970s में फीचर फिल्म बनाना मतलब बड़ा खर्चा। बजट बनाया गया तो 9 से 10 लाख रुपए, आज के हिसाब से ये शायद किसी स्टार की वैनिटी वैन का मंथली फ्यूल का बजट होगा, लेकिन तब ये बहुत बड़ा अमाउंट था। कुरियन साहब ने कहा, अमूल के पास इतना पैसा नहीं है। यह कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उन्होंने ये आइडिया फार्मर्स के सामने रखा। तब तक लगभग 5 लाख किसान अमूल यूनियन का हिस्सा हो गए थे, और उनका जवाब, सुनिए, ये हमारी कहानी है, ये बताई जाएगी और हम ही इसे फंड करेंगे। बस फिर क्या था, हर किसान ने अपनी पेमेंट से 2 रुपये डिडक्ट करने की परमिशन दे दी, सिर्फ 2 रुपये। आज के टाइम में 2 रुपये में क्या मिलता है साहब, शायद पार्किंग का हाफ मिनट भी नहीं। लेकिन तब वो 2 रुपये बने एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन, और इस तरह बनी फिल्म मंथन, दुनिया की पहली क्राउड फंडेड फिल्म। आज हम क्राउड फंडिंग को स्टार्टअप कल्चर का कूल वर्ड समझते हैं, तो गांव के किसान क्वाइटली काम ये ऑलरेडी कर चुके थे बैक इन द डे 1970s में। सोचिए, जब फिल्म रिलीज हुई ना, तो गुजरात के गांव-गांव से लोग ट्रक भर के थिएटर्स आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने टिकट नहीं, फिल्म खरीदी थी। वो सिर्फ ऑडियंस नहीं थे, वो प्रोड्यूसर्स थे, और जब स्क्रीन पर उनकी कहानी चल रही थी, वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस कहानी में ग्लैमर बिल्कुल नहीं है, रेड कार्पेट भी नहीं है, कोई पैपराजी और PR भी नहीं है, लेकिन इसमें एक पार्टिसिपेशन है, ओनरशिप है, और एक कलेक्टिव प्राइड है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सिनेमा सिर्फ स्टार्स का मीडियम नहीं, सिनेमा आवाज का मीडियम है। कभी कभी बड़े शहरों के बड़े लोग हिस्ट्री नहीं लिखते, सिर्फ छोटे छोटे गांव के लोग क्वाइटली,
चुपचाप बिना हैशटैग के रेवोल्यूशन कर देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी फिल्म के एंड में प्रोड्यूस्ड बाय देखें, थोड़ा इमेजिन कीजिए 5 लाख नाम स्क्रॉल हो रहे हैं और हाँ, हर नाम के साथ एक मुस्कान जुड़ी हुई है, क्योंकि कहानी सिर्फ बताई नहीं जाती, कभी कभी मिलकर बनाई जाती है। यही थी आज की कहानी, दूध से बनी सिर्फ मिठाई नहीं, एक फिल्म भी, मंथन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन छोटा है, तो याद रखिए, हिस्ट्री कभी कभी पॉकेट चिल्लर से भी बनती है।

भी डरते हो क्या? आप किससे डरते हो? बचपन रूह है, हवा के झोंके हैं, हमारे दिल के सुनहरे झोंके हैं। डरो मत, क्या समझे?

बच्चों अब क्या है? शाबाश शाबाश, लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर से है। लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत भी तुम जैसे

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: ओवर थिंकिंग लेवल प्रो। कुछ लोग इतना ओवरथिंक करते हैं कि अगर कोई के रिप्लाई करे ओके की जगह, तो पूरा ब्रेकअप स्पीच तैयार कर देते हैं। अपने माइंड में सारा टाइम के का मतलब सोचते हैं। के का मतलब खुश हो, खफा हो या खत्म हो।

दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉई और एक सॉफ्ट ड्रिंक की कहानी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉई कौन होता है? वो जो टाइम पर ऑफिस आए, वो जो बॉस को इंप्रेस करे, या वो जो लिंक्डइन पर लिखे प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी? नहीं, आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका नाम शायद आपने कैजुअली कभी सुना हो या शायद नहीं। ये कहानी है मैक्स कीथ की, और इस कहानी में वॉर है, पॉलिटिक्स है, प्रेशर है, और बीच में एक फिजी ट्विस्ट भी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले का जमाना सोचिए, यूरोप में टेंशंस बढ़ रही थी, लेकिन एक अमेरिकन ब्रांड क्वाइटली जर्मनी में ग्रो कर रहा था, कोका कोला। जी हाँ, 1939 तक जर्मनी में 43 बॉटलिंग प्लांट्स और 600 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। ब्रांड अच्छे से चल रहा था, बिजनेस स्टेबल था। फिर एक दिन वॉर शुरू, बॉर्डर्स बंद, सप्लाई चेन्स खत्म, अमेरिका और जर्मनी दुश्मन, और कोका कोला का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, वो सीक्रेट सिरप, जर्मनी तक पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया। अब सोचिए, अगर आप मैक्स कीथ होते तो आप क्या करते? आपके पास प्लांट्स हैं, वर्कर्स हैं, मशीन्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का मेन फॉर्मूला ही नहीं है। आप क्या करते, सोचिए। मैक्स ने हेड ऑफिस को एक मैसेज भेजा, मैं ब्रांड को जिंदा रखूंगा, व्हाट एवर इट टेक्स। लेकिन सिर्फ नहीं था, वो रियलिटी थी। तो उसने सोचा, ठीक है, कोका कोला नहीं बन सकती, कुछ और बनाते हैं। अब यहां से कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। मैक्स ने जर्मनी के फूड इंडस्ट्रीज के लेफ्ट ओवर्स यूज करना शुरू किए, जैसे कि वे एप्पल फाइबर और जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे, और उन सबको मिलाकर एक नया सॉफ्ट ड्रिंक बनाया। फैंसी नाम नहीं था शुरू में, बस सर्वाइवल का आइडिया था। लेकिन ड्रिंक बिकने लगा, प्लांट्स चलते रहे, वर्कर्स को नौकरी मिलती रही, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोका कोला का हेड ऑफिस अमेरिका में क्लूलेस था। उन्हें पता ही नहीं था कि जर्मनी में चल क्या रहा है। वॉर के दौरान मैक्स पर पॉलिटिकल प्रेशर्स भी थे। नाजी रिजीम का टाइम था, लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने कभी कोई नाजी पार्टी ज्वाइन नहीं की। वो सिर्फ एक चीज बना रहा था, ब्रांड को जिंदा। वॉर खत्म हुआ 1945 में, कोका कोला वापस जर्मनी आया, और मैक्स ने क्या किया, उन्होंने ऑपरेशंस वापस दे दिए, प्रॉफिट्स भी दे दिए, और जो नया ड्रिंक बनाया था वो भी दे दिया। सोचिए, वो चाहते तो उस ड्रिंक की ओनरशिप रख सकते थे, अपना एम्पायर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब कोका कोला ने पूछा इस नए ड्रिंक का नाम क्या रखें, तो मैक्स कीथ ने कहा, रन योर फैंटेसी इज वाइल्ड। फैंटेसी, अब इसी फैंटेसी वर्ड से एक नया सेल्समैन बोला, फैंटा। जी हाँ, फैंटा, जो आज हर सुपरमार्केट के शेल्फ पर हमें दिखती है। उसकी कहानी वॉर, सर्वाइवल और लॉयल्टी से शुरू होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, ये लॉयल्टी थी या स्ट्रैटेजी? कुछ लोग कहेंगे बिजनेस मूव था, कुछ कहेंगे एथिकल टाइटरोप वॉक था, और कुछ कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनलिज्म था। लेकिन एक बात इस सभी में क्लियर है, जब दुनिया टूट रही थी तब एक आदमी ने फैक्ट्रीज चलती रखी, वर्कर्स को जॉब दी, और ब्रांड को सर्वाइव कराया। आज के जमाने में लॉयल्टी का मतलब क्या रह गया है? हम जॉब चेंज करते हैं जैसे कि प्लेलिस्ट चेंज करते हैं। कंपनीज इंप्लॉयज को सिर्फ नंबर्स की तरह या उनके एम्प्लॉय कोड्स की तरह ट्रीट करती हैं, और इम्प्लॉयज कंपनीज को स्टेपिंग स्टोन्स की तरह। लेकिन इस कहानी में एक अजीब सी सिंप्लिसिटी है। मैक्स ने जो काम था वो किया, ना स्पॉटलाइट थी, ना सोशल मीडिया था, ना कोई पीआर कैंपेन था, बस काम, और फिर एक ड्रिंक जो एक्सीडेंटल थी बट ग्लोबल ब्रांड बन गई। कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ किंग्स और वॉर से नहीं बनती, कभी कभी वो सिर्फ एक फैक्ट्री फ्लोर पर बनती है, एक डिसीजन से, एक इंसान जो कहता है मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा,
और हाँ, अगली बार जब आप फैंटा की बोतल खोलेंगे, उस फिज के पीछे सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर नहीं होगा, आई एम श्योर उसके पीछे थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा वॉर का प्रेशर और एक एम्प्लॉय की अनडाइंग लॉयल्टी की कहानी सामने आएगी। तो दोस्तों, सवाल फिर वही है, दुनिया का सबसे लॉयल एम्प्लॉय कौन? शायद वो जिसका नाम हेडलाइन में नहीं आता, लेकिन जिसका काम वक्त की कसौटी पर टिक जाता है और कभी कभी एक फैंटेसी बनकर दुनिया भर में बिकता है। सोच कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: कल लोग इतने ऑक्यूपाई हो गए हैं मेंटली कि अगर घर में कभी आग लग जाए ना तो पहले रील बनाएंगे। गाइस, फायर इन माय हाउस, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।

मैं चाय को चाय के लिए पीती हूं। दोस्तों जरा गौर फरमाइए, मैं चाय को चाय के लिए पीती हूं। लोग शक्कर और दूध के लिए पीते हैं। मेरा रुख किस तरफ है जरा सुनिए, और जमाना किधर जा रहा है ये भी देखिए। अब देखिए, चाय असल में चीन की पैदावार है। कहते हैं लगभग 1500 साल से वहां इस्तेमाल हो रही है, और इतने लंबे अरसे तक किसी चीनी के जहन में ये ख्याल तक नहीं आया कि इस नाजुक, इस लतीफ, इस रूहानी सी चीज को दूध में डुबो दिया जाए। वहां चाय एक एहसास थी, एक खामोश सा रिचुअल, एक साफ शीशे जैसी शफफ प्याली। ना दूध की कसाफत, ना शक्कर का हंगामा। फिर चाय चीन से निकलकर रशिया गई, टर्किश गई, ईरान गई। वहां भी किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि बोले थोड़ा दूध डालकर देखते हैं, रंग अच्छा आएगा। लेकिन फिर आए अंग्रेज 17वीं सेंचुरी में। जब उन्होंने चाय से मुलाकात की तो ना मालूम उनको क्या सूझी। उन्होंने कहा इसमें दूध डालते हैं। शायद उनको हर चीज को थोड़ा अपने रंग में रंगने की आदत जो थी। हिंदुस्तान में चाय का रिवाज भी उन्हीं के जरिए आया, तो ये मुसीबत यहां भी फैल गई। पहले चाय में दूध डाला जाता था, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि दूध में चाय डालने लगे, और आज हाल ये है कि कई जगह चाय कम दूध ज्यादा होता है। रंग ऐसा लगता है किसी ने हल्के ब्राउन पेंट को पानी में घोला हो। मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम चाय पीते हैं या एक तरह का सियाल हलवा। लोग एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध उबालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, फिर चाय पत्ती इतनी डालते हैं कि बेचारी डूब कर सोचती होगी मेरा क्या कसूर था। फिर इलायची, फिर अदरक, फिर कभी कभी लौंग, दालचीनी और पता नहीं क्या क्या। और जब वो सब मिलकर एक मीठा, गाढ़ा, जोशीला सा शरबत बन जाता है, तो लोग खुशी से कहते हैं वाह क्या चाय बनी है। इन नादानों से कौन कहे अरे भाई तुम चाय पी ही नहीं रहे, तुमने तो एक डेजर्ट पिया है। अब मैं किसी की पसंद का मजाक नहीं उड़ा रही। हर इंसान को अपनी चाय का हक है। किसी को कड़क पसंद है, किसी को मीठी, किसी को कटिंग, तो किसी को मलाई मार के। लेकिन कभी आपने सोचा है चाय असल में होती क्या है। चाय एक ठहराव है, एक रुक कर बैठना है, एक लम्हा है जो सिर्फ आपका होता है। जब चाय बिना दूध की होती है तो उसका रंग हल्का सा सुनहरा होता है, उसकी खुशबू सीधा नाक तक जाती है। आप सिप लेते हो और टेस्ट धीरे धीरे घुलता है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। हमने जिंदगी के साथ भी वही किया जो

शुरू कर दी हो। अरे भाई, तपस्या नहीं है, बस असली टेस्ट को महसूस करने की कोशिश है। और मजेदार बात यह है, अंग्रेज खुद कहकर चले गए कि ज्यादा दूध डालना नहीं चाहिए, लेकिन जो बीज वो बोकर गए थे उनका बरगोबार इतना फैला कि अब हर गली, हर नुक्कड़, हर ठेले पर दूध वाली चाय का ही राज है। और सच कहूं, उस चाय के साथ जो कॉन्वर्जेशंस होती हैं वो भी कम खूबसूरत नहीं होती। कटिंग चाय पर दोस्ती होती है, ऑफिस की टेंशन डिसॉल्व होती है, ट्रेन के सफर में अजनबी दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए मैं दूध वाली चाय की दुश्मन नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कहती हूं कि कभी कभी एक प्याली चाय को उसकी असल सूरत में आजमा कर देखिए। शायद आपको लगे कि टेस्ट हल्का है, लेकिन धीरे धीरे वो सटल फ्लेवर दिल तक पहुंच ही जाए और फिर समझ आए कि हर चीज को मीठा बनाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपनी असली कड़वाहट में भी खूबसूरत होती हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप चाय बनाएं, जरा रुक कर सोचिए, आप चाय पी रहे हैं या दूध में थोड़ी सी चाय। और अगर कभी मौका मिले तो एक प्याली चाय को सिर्फ चाय के लिए पीकर देखिए, हो सकता है कि उस सिप में आपको जिंदगी का असली फ्लेवर मिल जाए। पी के देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: हर ग्रुप में एक दोस्त जरूर ऐसा होता है जो बोलता है, तू पे कर दे यार, मैं जीपे कर दूंगा। और वो जीपे आज तक ट्रैफिक में कहीं अटका हुआ है भाई।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे।

अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि हम सब जानते हैं आज के कलाकार मंच है नए गायकों का, नए गायिकाओं का, नए टैलेंट का। और आज हमारे साथ जो टैलेंट हैं उनका नाम है रविका जी। बाकी की बातचीत हम रविका जी से करेंगे। रविका जी अपने बारे में बताएंगी और उनके गीत हम सुनेंगे। रविका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। वेलकम टू आवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सो मच। मैं रविका एक गायिका और संगीत प्रेमी हूँ और मैं अपनी सभी संगीत के जरिए लोगों को, दिलों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ और अपने शो जज्बात के जरिए भावनाओं को सुरों में पिरोने का प्रयास करती हूँ।
0: अमेजिंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूब। तो रविका जी हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दें, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं?
1: बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई से ही हूँ मैं और बचपन में संगीत सीखा नहीं, शौक रहा हमेशा से
0: जी।
1: लेकिन तब थोड़ा बहुत गाया, शादी जल्दी हो गई, फैमिली जल्दी हो गई, लेकिन ड्यूरिंग कोविड मैंने फिर से शुरुआत करी एंड उसके बाद मैंने अपने कुछ पंजाबी एल्बम्स लॉन्च किए हैं और एवरी वेनेसडे आई हैव अ शो कॉल जज्बात ऑन माय फेसबुक पेज जहां पर मैं 3 घंटे लोगों की पसंद के गाने गाती हूँ। साथ ही साथ मैं अभी कुछ और एल्बम्स में काम कर रही हूँ। सो दिस इज माय लाइफ अबाउट म्यूजिक।
0: वाओ, अमेजिंग। दोस्तों आपने सुना रविका जी फेसबुक पेज पर, उनके ही फेसबुक पेज पर 3 घंटे के लिए रियाज करती हैं, लोगों के जो फरमाइशें होती हैं वो सॉन्ग्स प्ले करती हैं, गाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को रविका जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत खूब। चलिए रविका जी, आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहती थी?
1: बचपन में बहुत से सपने थे। शुरुआत से गाने का बहुत शौक था, एक्टिंग का बहुत शौक था, और सबसे ज्यादा डांसिंग का बहुत शौक था। ये सभी कुछ करना चाहती थी, बहुत कुछ सपने लेकर जिंदगी में, स्कूल में, और परफॉर्मेंस करी, बहुत सारे अवार्ड स्कूल में भी जीते। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन के सपने शादी तक आकर फिर कहीं ना कहीं थम जाते हैं।
0: ओके। एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम रविका जी, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बचपन के जो सपने थे वो आपने हमेशा अपने जहन में संजो के रखे, और जिस वक्त भी आपको मौका मिला आपने अपनी प्रतिभा को एंजॉय करना शुरू किया, आपने गाना शुरू किया। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया बात। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत रविका जी के आवाज में।

0: रविका जी, जैसे हम लोग अभी बचपन में ही हैं, आपके फेवरेट फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: मेरी फेवरेट टीचर मेरी केमिस्ट्री टीचर थी, मिस मेनन। इसलिए फेवरेट थी कि मुझे उनके बात करने का तरीका, सबसे ज्यादा उनका साड़ी पहनने का तरीका, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, और मैं हमेशा सोचती थी कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो ना ही सिर्फ उनकी पढ़ाई, पर सिर्फ उनको देख देख कर आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय सारीज कि आज तक सारी मेरा पहला ही प्यार है। और कभी भी अगर मुझसे कोई फेवरेट आउटफिट पूछे तो अभी भी मैं वही टीचर को याद करके सारी ही बोलती हूँ।
0: क्या बात है, दैट्स सो क्यूट दैट यू प्रैक्टिकली लाइक्ड वन एस्पेक्ट ऑफ योर टीचर।
1: यस या
0: तो दोस्तों चलिए अगला गीत हम प्ले करते हैं रविका जी की ही आवाज में, जो मैं उन्हीं के टीचर को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: थैंक यू।

0: बहुत खूब रविका जी, आपको और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छी तरह से बयान करते हैं, परिभाषित करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं?
1: वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सबसे ज्यादा वर्ड जो मुझे डिस्क्राइब करेगा वो है संगीत, म्यूजिक, गाना सबसे ज्यादा, क्योंकि आई ड्रिंक, स्लीप, ईट ओनली म्यूजिक.
0: वाओ,
1: हर वक्त मुझे मतलब मैं गाने से ही रिलेटेड अपनी जिंदगी में किसी भी सिचुएशन में संगीत मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है.
0: बहुत
1: उससे भी कहीं गुना ज्यादा है भावनाएं, इमोशंस,
0: ओके,
1: लॉट्स ऑफ इमोशंस. इसलिए जो मैंने अपना ऑनलाइन शो भी रखा है उसका नाम भी जज्बात रखा है. एंड आई डू 30 मिनट टॉक एवरी डे ऑन फेसबुक, उसका नाम मैंने दिल से रखा है. तो दिस इटसेल्फ शोज कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू इमोशंस, भावनाएं, जहां पर हम अपने इमोशंस को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले का भी सुन सकते हैं, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड द थर्ड यू कैन से इज समर्पण. गेट समर्पित टू वॉट एवर यू आर डूइंग, बी यू, आप 100% हर उस चीज में समर्पित रहो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपकी जिंदगी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका पैशन क्यों ना हो, समर्पित होना बहुत जरूरी है. नेवर बी कि आई एम द बेस्ट और बस इसके आगे कुछ नहीं. अपने आप को समर्पित कर दीजिए खुद ब खुद जिंदगी में सब कुछ, एवरीथिंग. सो संगीत, भावनाएं और समर्पण, ये तीन चीजें बहुत जरूरी है.
0: वाह, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब. संगीत,
1: थैंक यू,
0: समर्पण और भावनाएं. जाहिर से बात है, भावनाएं हमें, हम इंसानों को जानवरों से इसीलिए अलग करती हैं कि हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. भावनाएं बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं हमारी जिंदगी के लिए. आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा.
1: थैंक यू.
0: तो चलिए दोस्तों, एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की ही आवाज में.

0: रविका जी, चलिए लेट्स हैव सम फन आराम से। आपने अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार खाना बनाने की कोई भी चीज क्या बनाई थी और वो कैसी बनी थी?
1: ओके, द फर्स्ट वाज ऑब्वियसली दाल चावल, बिकॉज उससे ज्यादा इजी कोई चीज होती नहीं है। एंड इमीडिएटली उसी दिन मैंने मैगी भी बनाई थी।
0: Okay.
1: तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैंने मैगी को इतना ज्यादा क्यों पका दिया, या पानी ज्यादा डाल दिया, या वो 2 मिनट्स के बदले में पता नहीं कितने मिनट उसको पका दिया। एंड द दाल वॉज प्रिटी गुड, क्योंकि मम्मा ने तड़का लगाना अच्छे से सिखाया था। दैट वॉज प्रिटी सिंपल। सो जितना मुझे याद है आई थिंक यही था।
0: सिंपल इज ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटिफुल। दाल चावल वैसे भी बहुत बहुत सारे लोगों की, रादर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की पसंद है, लेकिन yes. पहली बार फिर भी उसे सक्सेसफुली बना लेना अपने आप में एक अकॉम्प्लिशमेंट होता ही है।
1: बिकॉज डर लगता है ना कि पता नहीं ज्यादा पड़ रहा है या पानी ज्यादा पड़ रहा है।
0: करेक्ट करेक्ट। और जहां तक मैगी की बात करें तो मैगी तो हमारे देश का सबसे फेवरेट फूड काइंड ऑफ फूड है, मतलब खास करके जो हॉस्टल्स में रहते हैं बच्चे, उनके लिए तो वो कहते हैं ना, वो जन्म बूटी है, जीवन बूटी है, कि उनके लिए तो एक वरदान की तरह है वो।
1: And it is tasty. Yes.
0: Yeah, sure. Absolutely, yeah. Absolutely. तो दोस्तों आपने सुना, आइए फिर एक गीत भी हो जाए रविका जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गायकी। रविका जी, थोड़ा सा और बेहतर जानने के लिए आपको आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? गाना गाने के अलावा बताइएगा।
1: ओके, गाने के अलावा मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। आई लव टू ड्राइव और मैं घंटों तक ड्राइव कर सकती हूँ बिना थके, बिकॉज सचमुच मुझे बहुत मजा आता है। ऑब्वियसली उसमें म्यूजिक साथ में लगी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई लाइक टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना बहुत बहुत पसंद है। मतलब आप जितना चाहे मुझे घुमा लीजिए, मैं कभी भी बोर नहीं होती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई लव टू मेक गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो मेरी वेवलेंथ के साथ मैच हो सके, फ्रेंड्स जिनके साथ में, मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी जल्दी दोस्त बना लेती हूँ जिंदगी में। सो आई थिंक दीज आर माई हॉबीज।
0: ऑलराइट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी ड्राइविंग हॉबी आपके ट्रैवल की हॉबी के साथ मैच करती है, तो इट्स अ सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट विच एक्चुअली टेक्स यू टू प्लेसेस, और बहुत बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है, तो थर्ड ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है हॉबी की, आपको बहुत बहुत सारे लोगों से मिलना पसंद है।
1: yes,
0: दोस्ती absolutely. करना पसंद है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब रविका जी, कई बार ऐसा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चलते चलाते कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है जो जिनके मैनरिज्म में, जिनके व्यवहार में कुछ ऐसी बात होती है जिससे कि हमारा मूड खराब हो जाता है, हमारा सारा का सारा दिन भी खराब होने की कगार पे आ जाता है। तो लोगों के मैनरिज्म में ऐसी क्या चीज मिलती है आपको जो आपको डिस्टर्ब कर देती हो?
1: सबसे ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती है हमसे कि हमारे बेस्ट करने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते। ऐसे बहुत से रिश्ते होते हैं और उस वक्त जो उनका बिहेवियर या उनके बात करने का तरीका, दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और हम लोग हमेशा जिंदगी में परफेक्ट नहीं हो सकते, सो जो लोग हमेशा हमारे में परफेक्ट एटीट्यूड ढूंढते हैं वहां पर बहुत परेशानी आ जाती है। बिकॉज लाइफ इज सिंपल, नॉट एवरीबडी इज परफेक्ट, लेकिन लोगों को मैच करने में काफी वक्त चला जाता है। दैट इज व्हिच इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट मी।
0: वैसे भी रविका जी ये बात कही गई है, यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑन दिस अर्थ, सबको तो आप खुश कर भी नहीं सकते।
1: जी जी बिल्कुल।
0: दूसरी बात ये भी है कि उम्मीदें इस दुनिया की, मेरा पर्सनल मानना यह है कि उम्मीदें इस दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ है। जब हम उम्मीद करना शुरू करते हैं तो हम पाने और खोने में लग जाते हैं और फिर फिर दुख आना शुरू हो जाता है।
1: बस यही एक परेशानी है कि उम्मीदें कभी कभी बहुत ज्यादा लोग लगा लेते हैं,
0: बस,
1: और जरूरी नहीं है कि हम पूरी कर पाए तो रिश्ते खराब हो जाते हैं।
0: सही कहा आपने, बहुत खूब। चलिए दोस्तों, फिर एक और प्यारा सा गीत सुनते हैं रविका जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारा गीत। रविका जी, आपकी जिंदगी में, आज तक की जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि, अकॉम्प्लिशमेंट क्या रहा है?
1: देखिए, कहने के लिए मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, चाहे वो सिंगिंग के लिए हो। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा तो जब हम लोग अपने बच्चे को जन्म देते हैं, दैट इज द मोस्ट प्राउड मोमेंट, बट दैट इज अ नेचुरल फैक्ट ऑफ लाइफ। बट अगर हम बात कर रहे हैं एज माय करियर, अदर देन हैविंग सो मेनी अवार्ड्स, एक चीज जो मुझे आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपलब्धि देती है, दैट इज माय जज्बात शो विच आई एम डूइंग ऑन फेसबुक। कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर बुधवार मैं 5,000 से 10,000, कभी कभी 50,000 लोगों को एक साथ में 3 घंटे उनकी पसंद के गाने गाती हूँ, और उसके बावजूद भी रात के 12:30 बजे तक लोग मेरा पूरी तरह से साथ देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं उन्हें थोड़ी सी खुशी दे पा रही हूँ उनकी पसंद के गीत गाकर, या उन्हें उस दुनिया में ले जाकर जो शायद वो भूल चुके हैं। आई लव टू टेक वेरी ओल्ड सॉन्ग्स जो काफी बुजुर्ग सुनते हैं, ऑल्सो आई गो टू ओल्ड एज होम्स जहां पर मैं उनके लिए गाती हूँ। तो ये चीजें मुझे बहुत बहुत खुशी देती हैं, अदर देन ऑल द यू नो जो अवार्ड्स वगैरह, तो ऑफ कोर्स वो प्राउड मोमेंट्स हैं, बट इससे ज्यादा बड़ा अवार्ड नहीं है जब लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया मैम, बिल्कुल ठीक फरमाया। जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा आप ओल्ड एज होम में जाकर उन लोग के लिए जब गाती हैं, तो जाहिर से बात है उनके जो जज्बात आपके लिए उमड़ते होंगे, उनके आशीर्वाद आपके लिए आते होंगे, या जो खुशी उन्हें मिलती होगी, वो सबसे बड़ा अकॉम्प्लिशमेंट है। यूं कहने को तो उसकी कोई कीमत नहीं है आज की इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, कोई कीमत नहीं है उनकी, लेकिन
1: ये जो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जब इमोशंस जुड़ते हैं, जिसको मैं जज्बात बोलती हूँ, मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती इन टूडेज वर्ल्ड।
0: एब्सोल्युटली, ये महसूस करने वाली बात है मैम।
1: जी जी जी
0: दोस्तों, महसूस कीजिए इस चीज को, और सुनिए एक प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। रविका जी, क्या आप सपनों में विश्वास रखती हैं, रात को देखने वाले सपने?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अगर सपने ना हो, उम्मीदें ना हो, तो हम मुकाम पाने की कोशिश नहीं करते। और अगर दिल से मेहनत की जाए तो सपने भी सच होते हैं। मैं आज भी अपने हर सपने में सपने भी देखती हूँ और उन सपनों पर मेहनत भी करती हूँ, बिकॉज सपने देखेंगे तो कुछ आगे जिंदगी में पाने की कोशिश करेंगे।
0: आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश के ही पूर्व प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति जी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद भी कह गए कि सपने देखते रहिए, सपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, हम पूरे कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत खूब। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत रविका जी की ही आवाज में।

0: खूब। रविका जी, आपके जीवन में जैसे मैंने ऊपर पूछा था लेकिन उससे थोड़ा सा अलग ये है कि आपके जीवन में सबसे अच्छा तोहफा, गिफ्ट आज तक क्या मिला है और किसने दिया है?
1: कि अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजें बोलेंगे तो वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा मिली है, बिकॉज दैट इज लाइफ, राइट। बट ऑफ कोर्स जो फर्स्ट नाइट पे मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे रिंग दी थी, उसकी वैल्यू मेरी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा है। नॉट बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द रिंग, बिकॉज वो मोमेंट जिंदगी का सबसे प्यारा मोमेंट था। एंड अगर आप नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों की बातें करेंगे तो जो इतना प्यारा सा मेरा परिवार है, उनका सेल्फलेस लव, और आज की तारीख में फेसबुक या संगीत की दुनिया में या जहां पर मैं गाने गा रही हूँ, उनका जो सेल्फलेस ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो और चाहे वो नॉन मटेरियलिस्टिक।
0: बहुत खूब, बहुत बहुत क्यूट, बड़ी ही प्यारी बात। दोनों ही चीजें आपने मुझे बताई कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का तोहफा और जज्बातों के जिंदगी में, जज्बातों के दुनिया का तोहफा क्या क्या है वो आपने हमें बताया। अमेजिंग। तो दोस्तों, एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत रविका जी की ही आवाज में

0: रविका जी, अब हम अपने प्रोग्राम के उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सुनने वालों के लिए और नए सिंगर्स के लिए, अब कुछ मैसेज दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे।
1: सबसे ज्यादा तो फर्स्ट आई विल से थैंक्स टू यू, टू द होल टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सेकेंडली, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मेरे लिए कि सभी का प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे संगीत को सुनना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूंगी बाकी लोगों के लिए कि हमेशा जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। अपने आप को खुश रखिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए एंड ट्राई टू फॉलो योर पैशन, बिकॉज अगर आपने कहीं हिम्मत हार दी, आपका पैशन बीच में ही दम तोड़ देगा। ऑलवेज बी बोल्ड टू टेक स्टेप्स जहां पर बिना किसी का दिल दुखाए, बिना अपने मान मर्यादा और डिग्निटी को खराब किए अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके किसी का दिल ना दुखाए। दैट्स ऑल।
0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही सीधा साधा और भावनात्मक मैसेज। दोस्तों, रविका जी के साथ हमने बातचीत की, उनके विचार हमने सुने, उनकी बातें हमने सुनी, उनको बहुत अच्छे तरीके से जाना और उनके बहुत खूबसूरत गीत भी हमने सुने। रविका जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जो आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मीन्स अ लॉट एंड सभी को बहुत सारा प्यार।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।